0: VCD and cassettes. Only on Chanda Cassettes.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM. सुनो दिल से. All right.

ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
2: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
3: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
2: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान।
1: रेडियो रिंजन 90.4 FM,
2: सुनो दिल से।

0: पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-93।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-30-92 या 90765-65750।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
0: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
4: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
0: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
4: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
4: पता, छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
5: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
8: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है, और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा, और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेजों में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पर ज्यादा फोकस करें ताकि सही सही जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हों सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
9: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: तू जो है, आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: रामू हरिया कल तैयार रहिए लो पराली जलाए चले के बा।
1: ठीक बा भैया।
2: ए भैया एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
0: ऐसा का है जरावला से काहे मना होता।
2: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
0: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
2: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
0: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा करी भाई जानकारी दे के।
2: याद रखी ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। और

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।
9: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
8: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
9: सुनो दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करे 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: कभी कभी।
1: तब भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आईला की ना।
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसक।

0: उपभोक्ता धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एस पी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एस पी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 90971602।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बाहुबली सतीश पांडे के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। अनंत सिंह सहित 9 लोगों पर केस दर्ज। राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन जुर्माना में भी अब मिलेगा रियायत। उचका गांव प्रखंड की गई समीक्षा। और हत्या के प्रयास में अलग अलग जगहों से 10 लोग गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। कुचायकोट थाना कांड संख्या 161 2026 के मुख्य प्राथमिकी अभियुक्त जिले के बाहुबली सतीश पांडे पिता स्वर्गीय रामाशीष पांडे जो नया गांव तुलसिया के रहने वाले हैं, इन पर आज कुचायकोट पुलिस ने इनके गांव में जाकर विधिवत ढोल नगाड़े के साथ न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तेहार का तामिला किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस की टीम द्वारा सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए स्थानीय गवाहों की उपस्थिति में इश्तेहार का तामिला किया गया। बताते चले कि भूमि विवाद को लेकर सतीश पांडे, उनके भाई और कुचायकोट के विधायक पप्पू पांडे और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट पर केस दर्ज हुआ था, परंतु अदालत ने पप्पू पांडे और उनके सीए पर फिलहाल पुलिस को गिरफ्तारी करने से रोक लगा दिया है और गुरुवार को अदालत में फिर इन मामलों में सुनवाई होनी है। इससे पहले बुधवार को कुचायकोट पुलिस ने सतीश पांडे के घर इश्तेहार का तामिला किया। चूंकि सतीश पांडे इसमें अभी भी फरार हैं और उन पर किसी तरह का अदालत ने कोई रोक नहीं लगाया है, ऐसे में सतीश पांडे पर पुलिस अब विधिक कार्रवाई कर रही है। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह का गोपालगंज में आगमन हुआ था। यहाँ वे एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान हथियार लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के पास यह वीडियो पहुंचा तो उन्होंने तुरंत बाहुबली नेता अनंत सिंह और उनके साथ ही 9 लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके बाद आज पुलिस ने अनंत सिंह सहित 9 लोगों के विरुद्ध अवैध हथियार रखने और लहराने सहित तमाम संगीन धाराओं में केस दर्ज किया। जैसे ही यह खबर अनंत सिंह तक पहुंची तो बताया जा रहा है कि वहां से उन्होंने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और बिहार पुलिस पर जमकर नाराजगी जताते हुए उन्होंने दर्ज एफआईआर को पूरी तरह से गलत बताया। अनंत सिंह ने कहा कि इस मामले में उनके खिलाफ बेवजह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी तरीके से कोई भी कानून को नहीं तोड़े हैं, उन पर लगाया गया सभी आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पुलिस उनके साथ न्याय करेगी। उन्होंने स्पष्ट और उचित जांच करने के लिए भी निवेदन किया।
4: इससे पहले भी आप नाच गाने में कार्यक्रम में गए हैं तो कोई बात नहीं,
5: इससे ज्यादा तुम वीडियो खोलो, इससे ज्यादा बिहार में रोज हो रहा है, तो आदमी की आदत हो गया, तुम भी लोग आदत पर आया कि अनंत सिंह का नाम कुछ ले लो, कुछ वीडियो चलेगा तो जानेगा ना कि वो एसपी ऐसा था कि नाचो देखे बिहार में रोक लगा रहा था, इतना बढ़िया था,
4: आपकी
5: बढ़िया नाम आवेगा, मोबाइल देखेगा खोल के लोग कि हम कौची गलती किए हैं तो कुल मोबाइल में चल रहा बाबू, जो गलती दे रहे होंगे भी वो सब गलती खोले ना मोबाइल, कितना मिलेगा देश में। हाँ, कोई लड़की के तंग करता, जो कोई मंजोबरी करता, कोई टेप सुनाता, कोई गलत करता, तब जो कुछ भी किए हैं वो अच्छा लगता है आदमी के। तो कहते जो नजायज करे उसको मार दीजिए, जो गलत करते हैं जैसा गलत करे उसको सजा दीजिए। हम कहने वाले हैं ये कौन गलती किए सजा दिए, ये जब आपको है तो कोई दे दे। नहीं, किसी से बात नहीं हुआ है।
4: आप मानते हैं जो दिन आप बैठे हुए थे वहां कोई गलत काम कुछ नहीं हुआ?
5: तुमने देखा मोबाइल में? दुनिया देख रहा है, हम नहीं देखे, हम तो रूम में थे। जो हुआ है वो तुम लोग ज्यादा देखा, कहता हम लोग नहीं थे, हम लोग फोटो देखो ना कहो।
4: आप है बगल में कुंजन सिंह बैठे हुए हैं, वो
5: जो वीडियो 4 घंटा ना देखने के जब हुआ देखने बड़ा दिखाता है फलवार
6: डांस हो रहा है, वो बाद में हुआ
5: है, बहुत बाद में हुआ, हमने जाए पेपर में यहाँ जाने कि देख के मोबाइल कैसे से आपको रखी हुआ वहाँ हमारे सामने नहीं, उस समय तुम ताको नहीं, कुछ समय में हम है तो ताकने का चीज में है,
6: प्रशासन वहाँ पर है,
5: हमें गए ओजा गए करीब 7 बजे आजा सब 10:30 बजे चल गए अपना रूम में, कितना देर हम जा रहे हैं और हम कोई राइफल टाइफल हमारा व्यक्तिगत तो गार्ड था हमारा गार्ड के साथ।
4: अच्छा, जैसे माननीय विधायक का वहाँ प्रोग्राम था गांव में था तो कोई लोकल थाना वाला वहाँ कुछ नहीं था,
5: थाना था थाना साथ था थाना हमको पूजा का थाना जितना बढ़िया कुल किया काम, हमें यहाँ बोले कि वहाँ का पुलिस बहुत अच्छा है, थाना वाला हमको पूजा करा दिया गया, पूजा करने के लिए मंदिर भीड़ में था, वह भीड़ उमड़ गया तो हमारे क्या गलती था, अब पूजा करना था तो कुछ फोटो लेके घूर गया तो उसमें हमारा कुछ गलती रहता ना, हमको कोई कहेगा तू मोबाइल ब्लॉक खबर कर दो कोई नहीं खींचे अनंत सिंह के फोटो, तुम एसपी है काबू हो तुरा जिम्मा में, हमारा तो कुछ है ना, कोई विधायक है जनता वोट दिया विधायक हो गए हैं, न कोई स्कूल गए हैं न कॉलेज गए हैं, तुम ने बुझो भाई कि मंदिर में आता ऐसे हो जाता तो मोबाइल सबको बंद करा दो, मोबाइल हटवा दो, तुम्हें पावर है हमें तो कुछ है नहीं, फोटो किसी को बोला खिंचवाते किसी को कुछ हम कहने के लिए जाते हैं तब हम दोषी हैं, कुछ डाल देता है चैनल पर तो उसको हम दोषी हैं।
7: गोपालगंज में आंधी और बारिश में जमकर ओले गिरने से किसानों की कमर टूट गई है। बुधवार की देर शाम लगभग 7:30 के आसपास जिले के कई इलाकों में पत्थर गिरा है, बारिश के साथ जमकर मोटे मोटे ओले गिरे हैं जिसके वजह से आम की फसलों और सब्जी के फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ओले गिरने के वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है और किसान काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में अब वाहन पर लगे जुर्माना के संदर्भ में भी सुनवाई होगी और इसमें भी रियायत मिलेगा। इसको लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत की तरफ से सभी वाहन मालिकों को सूचित किया गया है कि इस बार के राष्ट्रीय लोक अदालत में आप अपने वाहन से संबंधित समन चालान मामलों का निपटारा भी करवा सकते हैं, इसमें समन राशि में रियायत प्रदान की जाएगी। हालांकि असुविधा वाणिज्यिक यानी कमर्शियल वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के लिए लागू होगी। बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति अपने वाहन का समन राशि जमा करना चाहते हैं वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत यातायात थाना गोपालगंज में जाकर फॉर्म जमा करें एवं अपने समन राशि का निपटारा कराएं। यह प्रक्रिया 6/5/2026 से प्रारंभ की गई है। आप यातायात थाने में जाकर अपना टोकन प्राप्त कर सकते हैं और राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि को कम कराकर मामले का निष्पादन करवा सकते हैं। आज समाहरणालय के सभा कक्ष में जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आकांक्षी प्रखंड उचका गांव के विभिन्न विभागों के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में स्वास्थ्य पोषण शिक्षा कृषि आधारभूत संरचना पेयजल स्वच्छता सामाजिक विकास एवं वित्तीय समावेशन से संबंधित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा हुई। बैठक के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में ANC रजिस्ट्रेशन संस्थागत प्रसव तथा TB मरीजों के सफल इलाज जैसे सूचकांकों पर संतोषजनक प्रगति पाई गई। वहीं कम वजन वाले बच्चों की संख्या को और कम करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। हाइपरटेंशन एवं डायबिटीज की स्क्रीनिंग में भी बेहतर प्रदर्शन की सराहना की गई। इधर माझागढ़ थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त धीरज कुमार सिंह और संजय सिंह को गिरफ्तार किया। ये दोनों स्वर्गीय अयोध्या सिंह के पुत्र हैं और माझागढ़ के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके साथ ही एक विधि विरुद्ध बालक को भी पुलिस ने निरुद्ध किया है। इन पर भी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था और तभी से फरार चल रहे हैं। अब पुलिस ने इन्हें भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय पर जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना और उसे निष्पादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान आवेदनों के त्वरित निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के लिए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय पर स्वयं जनता से उनकी समस्याओं को सुनकर निष्पादित करने का प्रयास करते हैं। विशंभरपुर थाना की पुलिस ने आज 124 लीटर से अधिक विदेशी शराब को बरामद किया और एक शराब तस्कर की गिरफ्तारी हुई। एक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस की यह कार्रवाई सल्लेपुर नया टोला के पास हुई जहां गुप्त सूचना के आधार पर एक स्कॉर्पियो को पकड़ा गया। इस गाड़ी से 124 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इस दौरान शराब तस्कर बबलू कुमार पिता दुधनाथ चौधरी साकिन तमकरिया थाना बैरिया जिला पश्चिमी चंपारण को विधिवत गिरफ्तार कर गाड़ी और शराब को जब्त किया गया है। तुरकाहा रेलवे ढाला पर एक ऑटो ने रेलवे फाटक में जोरदार ठोकर मार दिया जिससे फाटक लॉक हो गया और उसका कुछ वायर इत्यादि टूट गया। बताया जा रहा है कि इसके वजह से कई घंटे तक वहां आवागमन प्रभावित रहा, ट्रेनों के आवागमन पर भी इसका असर देखने को मिला और काफी देर तक लोग परेशान दिखाई दिए। पूर्णिया जिले में किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान के दूसरे दिन सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना तथा कृषि विज्ञान केंद्र पूर्णिया के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। इसमें 30 से अधिक किसानों एवं अन्य हितधारकों ने सहभागिता की। जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का 10 मई को गोपालगंज में आगमन हो रहा है। सद्भाव यात्रा के दौरान उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज जिला अध्यक्ष ने पार्टी के सभी प्रखंड अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के पूर्व जिला अध्यक्ष और वरीय पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस संभावित यात्रा की तैयारी एवं रणनीति पर चर्चा करते हुए इसे सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जोर शोर से लग जाने का निर्देश दिया गया। गोपालगंज में सारण जिला के बॉर्डर से सिवान जिला के बॉर्डर तक जिला मुख्यालय सहित सैकड़ों जगहों पर निशांत कुमार का भव्य स्वागत किया जाएगा, इसकी भी तैयारी की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने संयुक्त रूप से आज ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान मान्यता प्राप्त विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी रही और निर्वाचित मानकों के अनुरूप व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान वेयर हाउस की सुरक्षा, सीलिंग व्यवस्था एवं अन्य प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा की गई जो संतोषजनक पाई गई। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हाल चाल एक बार फिर। बाहुबली सतीश पांडे के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। अनंत सिंह सहित 9 लोगों पर केस दर्ज। राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन जुर्माना में भी अब मिलेगा रियायत। उचका गांव प्रखंड की गई समीक्षा। और हत्या के प्रयास में अलग अलग जगहों से 10 लोग गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ। आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51-51 पे।
9: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
10: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
11: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
8: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
12: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
13: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम
14: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल। क्लास 10th तक सेशन 2026-27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
13: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
14: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
13: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
14: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
4: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
3: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
4: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स।
3: और सबसे खास बात, 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
3: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
5: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हो सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
7: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
4: कहाँ पर?
7: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
4: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
7: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
4: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0675-75।
5: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
5: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
5: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565965।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में।
8: ऑनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
8: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
9: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
8: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
9: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
9: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
10: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
10: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: क्लिनिक में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा।
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: और इसी खूबसूरत गीत के साथ श्रोताओं कार्यक्रम आज सवेरे में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।
2: যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা কেউ কথা।
0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए

0: समझौते के करीब फ्रांस ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। और अब समाचार विस्तार से। केरलम के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में नई पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करती है और वो न तो दोबारा चुनाव चाहते हैं और न ही किसी प्रकार का संवैधानिक संकट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेगी। स्टालिन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि डीएमके अगली सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम एआईएडीएमके से बातचीत कर रही है। पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कल राज्य सचिवालय नावन्न में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों और चुनाव बाद हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी सुनील बंसल, पार्टी नेता सौमित्र खान और ज्योतिमर्य सिंह महतो भी मौजूद रहे। श्रमिक भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी के नव निर्वाचित विधायक कल अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेंगे। शनिवार सुबह 10 होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तब भी समारोह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIEC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन हमलों में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इस बीच उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को भी गोली मारी गई। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारियों के निजी सहायक की हत्या की कड़ी निंदा की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान आज मुंबई में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति लाम मुंबई में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे।
4: वियतनाम के अध्यक्ष तो लाम का मुंबई का एक दिवसीय दौरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होगा, जिसमें अध्यक्ष लाम द्वारा रिंग द बेल सेरेमनी भी शामिल है। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन CII द्वारा और वियतनाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम लोकभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास, सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
5: We have a deep and trusted relationship.
6: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है, क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सुरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
5: In its developmental journey.
0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
7: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है, हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है, जिसने जारी अमेरिका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्ला के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि लक्षित व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं, जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: फ्रांस ने होर्मोज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मोज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में आज हम प्रख्यात लेखिका शिव शंकरी से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
8: I was a Sanskrit student. I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. My becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to know that language, to know the habits, the rituals.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद तथा टोबैगो जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: फरहत पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर आज सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शौर्य का एक वर्ष, जल थल नभ में और सशक्त हुई सेना। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारत में पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स, किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले करेगी प्रहार। पत्र लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर का एक साल, अजय हिंदुस्तान के वो 88 घंटे जब हमारे प्रहार से घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर ऑपरेशन सिंदूर पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, आज देश इस सैन्य अभियान की सफलता की वर्षगांठ मना रहा है। इसका संदेश यही है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों है। दैनिक जागरण ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद शेयर बाजार में तेजी आने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, अमेरिका ईरान वार्ता में प्रगति से बाजार में उछाल, सेंसेक्स 941 अंक चढ़ा, ट्रंप के नरम रुख से क्रूड की कीमतों में आई गिरावट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश, महाराष्ट्र में पारा 43.5 डिग्री के तक पहुंचा, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभाग
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary to expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah among host of dignitaries to attend swearing-in ceremony in Patna. Newly elected Congress MLAs of Keralam to meet in Thiruvananthapuram today to elect their leader. India marks first anniversary of Operation Sindoor, launched in response to Pahalgam terror attack. Bengal BJP leader Shubhendu Adhikari's close aide shot dead in North Chobbis Parganas district of West Bengal. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia. France moves its carrier strike group to Red Sea as part of potential mission to secure Strait of Hormuz. And Delhi to host 2026 Commonwealth Table Tennis Championship. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and several senior NDA leaders will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna at 12:10 p.m. Our correspondent reports that the cabinet expansion is being carried out based on the formula followed in the previous government. Around 15 BJP and 14 JDU MLAs are likely to take oath as ministers. Additionally, two ministers from Lok Janashakti Party Ram Vilas and one each from Hindustani Awam Morcha and Rashtriya Lok Morcha are expected to be inducted. The newly elected Congress MLAs of Keralam will meet at Thiruvananthapuram today to elect their leader. Congress-led UDF, which secured 104 out of 140 assembly seats in the state, will approach the governor once he reaches Thiruvananthapuram from Chennai. Kerala Governor Rajendra Vishwanath Arlekar, who is also holding the additional charge of Tamil Nadu, is in Chennai today. More from our correspondent.
11: In Keralam, meeting of the newly elected legislatures of Congress will be held today morning at Thiruvananthapuram. In the meantime, AACC observers who reached last night at Thiruvananthapuram will continue discussions with the individual MLAs. On the other hand, informal discussions between various constituents of UDF is also progressing on the ministerialship positions. Congress sources hinted that an immediate decision will be taken regarding the chief ministership and approach the governor to form government.
10: In Tamil Nadu, DMK chief M.K. Stalin has said that his party respects the people's mandate for a new party assuming power in the state, and he does not want another election or a constitutional crisis. He also said that his party will not stay in the way for the formation of a new government. Mr. Stalin also rejected the rumours that DMK is in talks with AIADMK to form the next government. In a shocking incident, Chandranath Rath, close aide of BJP leader Shubhendu Adhikari, was shot dead by unidentified assailants in Madhyam Gram, North Chobbis Parganas district of West Bengal. We have more from our correspondent.
12: Reports say that eight assailants on four motorbikes ambushed Rath's car in Doharia and fired bullets indiscriminately. Rath was rushed to a local hospital but was declared dead on arrival. His driver, Buddhadev Bera, sustained multiple bullet injuries to his chest, abdomen and arm and remains in critical condition at a Kolkata hospital. Hospital authorities confirmed that two bullets pierced through Roth's heart and one struck his abdomen. Police have seized a four-wheeler allegedly used in the crime, though its number plate is suspected to be fake. Bullets and cartridges are also recovered from the scene.

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: जय हिंद सर।
8: एट इज मैम, मीट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
0: कहाँ पर?
7: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
0: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
7: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
0: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565965।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
10: क्यों, क्या हुआ है?
9: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
10: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
9: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
11: म्यूजिक बंद हो गया, बस चलो पीछे चलो।
12: तुम अच्छे लड़के हो अबीर, मैं भी अच्छा हूं, पर तुम शुरू से अच्छे होगे, मैं नया नया बना हूं। ये साथ थी तो याद रहता था कि अच्छा हूं, वरना भूल जाता हूं।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
9: क्यों, क्या हुआ है?
8: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
9: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
8: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
10: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पर ज्यादा फोकस करें ताकि सही सही जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हो सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
11: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
12: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
13: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
14: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
15: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
13: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
12: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
13: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करें 87-8-94-18-744।

0: तो भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लखी ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211-87952। नियम और शर्तें लागू।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
11: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
11: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
12: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
13: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
12: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
13: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
12: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
14: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
15: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
14: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
15: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
14: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5, हनुमानगढ़ी, गोपालगंज।
16: में है।
15: जानकारी है तो कॉल करें 6252-62112 पे।
17: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
18: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो रहा है। पटना के गांधी मैदान में होने वाले समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा और जदयू के 12-12 सदस्यों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 तथा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री के कैबिनेट में शामिल होने की संभावना है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
1: माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विशेष रूप से रहने वाले हैं एवं देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, देश के स्वास्थ्य एवं रसायन मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी समेत बिहार के एनडीए के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत पूरे बिहार के लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए आ रहे हैं।
0: मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार के तय फार्मूले पर होने के आसार है। इसमें ज्यादातर पुराने चेहरों को जगह मिलने की संभावना है। कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: विधायकों की संख्या के अनुसार राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 36 हो सकती है। आज 28 सदस्यों के शपथ लेने की संभावना है। इनमें भाजपा कोटे से संभावित नामों में विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, नीतीश मिश्रा, रमा निषाद, संजीव चौरसिया, रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, संजय सिंह टाइगर, इंजीनियर शैलेंद्र, मिथिलेश तिवारी और अरुण शंकर प्रसाद के नाम शामिल हैं। जदयू कोटे से अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, भगवान सिंह कुशवाहा, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, श्वेता गुप्ता, अतिरिक्त कुमार और रत्नेश सदा के मंत्री बनाए जाने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार समेत कुछ नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 तथा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री बनाए जाएंगे। लोजपा रामविलास से संजय सिंह और संजय पासवान, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन के मंत्री बनने की संभावना है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से विधायक स्नेह लता को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। समाचार कक्ष से मैं अनुपम कुमार।
0: शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गांधी मैदान और आसपास के क्षेत्रों में 80 दंडाधिकारियों के नेतृत्व में 3,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की व्यवस्था की गई है। समारोह को देखते हुए पटना की यातायात व्यवस्था में आज बदलाव किया गया है। इसके चलते सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक गांधी मैदान की ओर जाने वाले कई मार्गों पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। शेखपुरा मोड़ से हवाई अड्डा की ओर सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर भी रोक रहेगी। पटना जंक्शन से डाकबंगला चौराहे की ओर तथा भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर भी सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा भी कई अन्य मार्गों पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं राजधानी पटना के पीएमसीएच और आईजीआईएमएस समेत कई अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि 10 बेड और 1 मेडिकल टीम को अलर्ट पर रखा गया है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर पटना के बिहटा स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए चार श्रम संहिताओं के तहत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। रसायनों, विषैले पदार्थों और भारी मशीनों के साथ काम करने वाले खतरनाक कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए उम्र की परवाह किए बिना स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। प्रदेश के विभिन्न अदालतों में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में इस बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की भी सुनवाई होगी। बेगूसराय विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव करुणानिधि प्रसाद आर्या ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि लोक अदालत में 90 दिन पूर्व कटे ट्रैफिक चालान मामलों का निपटारा भी किया जाएगा।
3: माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना के अथक प्रयास से बिहार सरकार ने ट्रैफिक चालान के मामलों में नागरिकों को एक विशेष राहत देने की योजना बनाई है और एक गजट पब्लिकेशन किया है कि वैसे लोग जिनका चालान 90 दिन पुराना है और वो अभी तक अगर चालान की राशि परिवहन विभाग को नहीं दे पाए हैं तो वैसे मामलों में 50% राशि की छूट राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन लोगों को दिया जाए। जिन लोगों का चालान कटा है, लाखों लोग हैं वैसे।
0: बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 72वीं एकीकृत प्रारंभिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आज से आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 31 मई है। परीक्षा के इस वर्ष जुलाई में होने की संभावना है। आयोग की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार 72वीं संयुक्त परीक्षा में पदों की संख्या 1230 से घटाकर 1186 कर दी गई है। आयोग की सूचना के अनुसार बिहार ईंख विकास नियमावली 2025 में बदलाव के कारण गन्ना उद्योग विभाग की ओर से प्राप्त 44 पद हटाए गए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकवादी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
1: ऑपरेशन सिंदूर भारत के सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के अवसर पर वीर सैनिकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सेना के एडीजी पीआई ने अपने संदेश में देश के प्रत्येक नागरिक का अभिनंदन किया, जिन्होंने कठिन समय में धैर्य और अनुशासन के साथ राष्ट्र का साथ दिया। सेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि यह नए भारत की पहचान है, जहां साहस, संकल्प, शक्ति के साथ राष्ट्र सर्वोपरि है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तरी हिस्सों के जिलों पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत आसपास के क्षेत्र में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
2: दिनांक 7 मई 2026 को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस दौरान कुछ जगहों पर ओलावृष्टि के भी समाचार हैं। इस बारिश से खेत में लगी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं पूर्णिया में कल अलग अलग थाना क्षेत्र में वज्रपात की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। भागलपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 333A खैरा सोनो मार्ग पर स्थित मांगो बंदर पुल और नरियाना पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण दोनों पुलों पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पथ निर्माण विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव और उपचुनाव के लिए मतदान केंद्र के प्रारूप प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार अब तक मतदान केंद्र से संबंधित केवल एक ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त हुई है। सहरसा जिले के काशनगर थाना क्षेत्र के मौरा भस्ती चौक दरगाह के पास 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 युवक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वह बेगूसराय जिले के गढ़पुरा हसनपुर पथ पर मालीपुर तारा टोला पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक की चपेट में आकर मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति की मौत हो गई। पूर्णिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने 100 मोबाइल के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सीवान जिले के जीरादेई थाना क्षेत्र के जामुपुर बाजार में आभूषण दुकान से मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने 20 लाख रुपए मूल्य के जेवरात लूट लिए। बाद में भाग रहे अपराधियों में से एक को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। गया जिले के बोधगया में निरंजना पुल पर बच्चों को ले जा रहा चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। इस हादसे में एक व्यक्ति और 6 से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का मगध मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी की मौजूदगी में मंत्रिमंडल विस्तार आज, अधिकतम 30 मंत्री ले सकते हैं शपथ। प्रभात खबर ने इसी खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, राजनीति के इस बड़े आयोजन में बिहार की लोक संस्कृति की भी दिखेगी झलक, 1.5 घंटे शहर में रहेंगे पीएम। दैनिक जागरण लिखता है, बेली ब्रिज का खाका तैयार, विक्रमशिला सेतु पर 2 हफ्ते में दौड़ने लगेंगी छोटी गाड़ियां। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, 9 लाख राज्य कर्मी बैंक से ले सकेंगे सैलरी एडवांस,

सरकार लेगी गारंटी। आज अखबार ने राज्यपाल सैयद अता हसनैन के हवाले से लिखा है, चिकित्सा सिर्फ पेशा नहीं मानवता की सबसे बड़ी सेवा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार, आज पटना के गांधी मैदान में हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल होंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल की आज से शुरुआत, पटना के बेटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल में जांच शिविर का आयोजन। और मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और बांका समेत आसपास के क्षेत्रों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
0: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम
2: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026-27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
2: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160002।
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053769015 पे।
8: Now pick your phone up.
9: Hello?
8: Pick it up, pick it up.
9: Hello?
8: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: मनोज कुमार।
1: कैसे हैं मनोज जी?
2: ठीक है।
1: तो क्या हो रहा था?
2: क्या हो रहा था? वही आम के बगीचे में बैठे। और क्या होगा
1: जी,
2: अभी तो काम धंधा कुछ नहीं है, खेती बाड़ी।
1: तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
2: जानकारी आप ले लीजिए, दे रहे हैं अपने क्षेत्र का।
1: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल दीजिए।
2: हमारे क्षेत्र में है एक जगह है भीम बांध। भीम बांध में जो है घूमने फिरने का जगह है, हम लोग वहाँ जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है।
1: अच्छा अच्छा।
2: वहाँ पर जो है पहले आज से करीब 10 साल पहले बहुत हालत खराब था, एनसीसी का राज था उधर। अब ठीक हो गया, अब लोग वहाँ आते जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: घूमने का बहुत अच्छा जगह है।
1: चलिए, कभी फुर्सत मिलेगा तो आएंगे।
2: ये गए तो गाना सुना दीजिए बॉर्डर का, संदेश आते हैं
1: और सुनवाना भी है।
2: सुनवा देते हैं आपको, सरिता देवी को और पूरे रेडियो श्रोता संघ को।
1: जी चलिए, तो प्ले कर रहे हैं।
2: ठीक है,
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है एक साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
10: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हाँ जी, योगेश जानते हैं मेरा अच्छा
2: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम में।
1: धन्यवाद
2: जी। कैसे हैं योगेश जी?
1: बढ़िया है, बढ़िया है
2: जी। तबीयत वगैरह सही है ना?
1: सब एकदम
2: जी बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
1: फिल्म डॉन से सुनवा देंगे। अरे दीवानों मुझे पहचानो
2: जी। और सुनवाना भी है?
1: हाँ जी, कुछ साथी है श्रीपाल गोयल जी लखन और मजी दिली पाहुजा जी राजन जानवन।
2: तो प्ले करेगा ना आपके?
1: हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माई चॉइस कॉल।

0: हेलो।
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: हाँ नमस्कार मैडम,
1: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से। जी,
0: मुकेश कुमार बोल रहे हैं, बलेथा मोहम्मदपुर।
1: कैसे हैं मुकेश जी?
0: अच्छा है, अपना बताइए।
1: हम भी बढ़िया है। क्या हो रहा था?
0: बैठ के फोन लगा रहा था, क्या करेगा, आज 2-4 दिन हुआ है आया हुआ घर में।
1: अच्छा,
0: तो क्या थोड़ा बात करके गाना सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल बढ़िया की है।
0: आधा घंटा हो गया फोन लगा रहा, लगी नहीं रहा, एक बार लगा तो उठाए नहीं। यहाँ
1: छूट गई होगी।
0: धूप निकला है कि नहीं गोपाल में?
1: नहीं, आज तो निकला हुआ है धूप।
0: हाँ
1: हाँ, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आज आपको।
0: कोई क्या बोलता है, भक्ति गाना सुना दीजिएगा।
1: कोई भी भक्ति गाना है?
0: हाँ, भोजपुरी, भोजपुरी में।
1: और सुनाना भी?
0: मेरा ब्रांच से बात कर लीजिए।
1: जी बिल्कुल। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसी हो? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो क्या हो रहा था अभी? अभी तो बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। तो नाम बता दीजिए अपना।
2: आशा देवी। गाना बजा दीजिएगा।
1: कौन सुन गया? कौन सुन?
2: मैया मोरे जाग गई हो। हाँ सुनाना है।
1: नाम लीजिएगा।
2: पूनम कुमारी, रीता देवी, पूजा देवी, आरती देवी, सुनीता देवी, ऊषा देवी और मेरे भाई मुकेश कुमार, ये सब मेरी बहन है। ठीक है
1: जी जी। तो प्ले कर गए गाना?
2: मेरी बेटी एक है, अदिति कुमारी।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कॉल

0: बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: एडमिशन फ्री।
7: कहाँ पर?
6: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
7: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
6: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
7: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।
8: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
9: ठीक बा भैया।
10: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
8: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
10: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
8: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
10: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
8: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
10: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
11: Now pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
14: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
13: Bhage bhage firte hain.
15: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो,
17: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 FM में।
16: गुड मॉर्निंग
17: जी। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है?
16: ठीक है, अनिल बात कर रहे हैं छोटपुर से।
17: जी,
16: आप बताइए, आप ठीक हैं?
17: जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया है हम।
16: जी अच्छी बात है। और आज गाना सुना दीजिएगा, हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे हमेशा।
17: और सुनाना भी है?
16: हाँ भाई को, बाकी जितने लिसनर्स हैं सबको।
17: तो प्ले कर रहे हैं गाना?
16: हाँ करिए। थैंक यू,
17: वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने कॉल।

0: पलट के ना देख इस कदर जाने वालों को, पलट के ना देख इस कदर जाने वालों, जाने वापस नहीं आते दिल तोड़ के आने
1: वाले। बहुत
0: बहुत स्वागत है आपका रेडियो में। मैं कमरान रफीद
1: देते हैं जी, कैसे हैं?
0: हम अच्छा है, आप?
1: अभी बढ़िया है। क्या हो रहा था?
0: कुछ नहीं, काम धंधा जी। और नाश्ता हो गया? नाश्ता हो गया
1: जी, खाना पीना हो गया है।
0: सुनता हूँ जोर जोर से भाई। अरे हेलो, मैं कैसे सुन लेता हूँ, आज जुड़ने का मन किया तो मैं आज जुड़ी
1: हूँ। सही किए। तो गाना कौन सा सुनना है बता दीजिए।
0: हमको गाना सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम है बेजू बावरा। ये गाना है ये दुनिया के रखवाले, सुन मेरे दर्द भरे नाना
1: जी। और सुनाना दीजिए।
0: और ऐसा शाहजहाँ, खान भाई, समीर आलम, गुलाम हुसैन, सफर, सबीना, सबक सिद्दीकी, मिसमरी, मिसा भारती, मिसा सनुआ, एना हजरा और जितने लोग सुन रहे हैं सुनवा दीजिएगा। नमस्कार
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे।
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
8: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
2: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
8: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
8: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
11: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
12: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
10: संपर्क 99-393-65-930।
13: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
14: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
13: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
15: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
16: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
15: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
16: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
15: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
16: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा।
17: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
15: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
18: Now pick it up, pick it up.
19: Hello.
18: Pick it up, pick it up.
19: Hello.
18: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: नमस्ते मैडम जी।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: कैसे है मैडम जी?
2: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ।
2: तो क्या हो रहा था?
1: आपका इंतजार हो रहा था, कॉल फोन लगेगा आपके पास।
2: तो कॉल तो लग गया
1: जी।
2: तो गाना कौन सा सुनना है?
1: गाना सुनना है प्रेम रोग का।
2: प्रेम रोग से कौन सा गाना?
1: प्रेम रोग का गाना तेरा मेरे किस्मत में नहीं शायद तेरा इंतजार।
2: मैं तुझे कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ ना।
1: जी,
2: जी। और नेहा बात कर रही है भोरे से।
1: जी मैडम जी, नेहा बोल रहा
2: हूँ। जी चलिए, तो प्ले कर दे गाना
1: जी।
2: और सुनवाइएगा कोई गाना किसी को।
1: आपको आज इतना रेडियो रिमझिम आ गया, दोस्त सब सुनते उसके सबके साथ।
2: चलिए तो प्ले कर रहे हैं
1: मैडम जी। नमस्ते।
2: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सुनवाई।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।

0: हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, मॉड्यूलर ओटी, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97 714 86 164।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
0: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
1: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
0: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
0: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस
4: 993-972-1308।
5: बात, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो, नमस्ते मैडम।
7: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 94.4 FM में।
6: हाँ सर, मैं प्रसाद बोला था। नहीं
7: जी, काल चल बा
6: कौन सुना है, ठीक बा?
7: जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया।
6: रोवा तो इतना भीड़ रहता है कि फोन है जल्दी नहीं कर लगो।
7: हाँ
6: मैडम, मैं वो गाना सुना कर लो।
7: जी बिल्कुल, बता दी गाना के नाम।
6: नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम।
7: जी और सुनाए के भी बात।
6: हाँ, सबसे पहले रहुआ के थाने से रामा जी बानी, हरिंदर जी, वीरेंद्र जी, आज जितना भी रेडियो रेडियो सुनने वाला बड़ा सब श्रोता के साथ सुनने के चाहते नहीं।
7: जी चलिए, प्ले करता नहीं गाना।
6: धन्यवाद
7: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने कॉल के लिए।

0: हेलो,
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका
0: थैंक
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: यू मैम, मुझे तो लगा कि आज कॉल ही नहीं लगेगा। एक बार लगा था, आप उठाए नहीं।
1: हाँ, हो सकता है कि नहीं रिसीव हुआ होगा, क्योंकि
0: मैं
1: लगातार
0: तो
1: कॉल
0: सोच
1: आते हैं ना,
0: रहा
1: कभी कभी छूट जाते हैं कॉल।
0: जब हार मान लिया था, क्योंकि हमेशा 70-80 बार में लग जाता है, आज 128 हो गया।
1: तो कोई बात नहीं, लग गया ना।
0: लग गया, नहीं लगता तो और 150 तक कोशिश करते, उसके बाद नहीं करते। काम भी तो करना है ना।
1: बिल्कुल,
0: और सब ठीक है?
1: जी जी सब बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनना है बता दीजिए।
0: क्यामत मूवी का गाना सुनना है, वो लड़की बहुत याद आती है,
1: अब सुनवाना भी है।
0: कभी मुस्कुराना है। हाँ, सबको सुनाइए, आप भी सुनिए। मेरे फ्रेंड आकाश, सैनुल्ला और मुस्कान।
1: जी, और अपना नाम बता दीजिए।
0: मेरा नाम है रियाजन, सॉरी।
1: जी, और अभी कहाँ है आप रियाज जी?
0: बेंगलोर, ये मेरा तीसरा कॉल है।
1: हाँ हाँ, वो तो पता है, नाम थोड़ा अभी याद नहीं हो रही है। नाम याद हो जाएगी तो नहीं पूछेंगे।
0: नहीं,
1: पहचान लिए कि आप बेंगलोर से ही बात कर रहे हैं, लेकिन नाम में थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन होता है। जी जी आज तो नहीं हो रही है, आज मौसम ठंडा है, धूप निकला हुआ है। कल हुई थी, काफी बढ़िया बारिश हुआ था।
0: हमारे और के बारे समझदार है, बोलती है दिन में काम करो, हम रात को आएंगे। डेली रात में आती है,
1: लेकिन बरसात का कोई टाइम नहीं होता है ना, कभी भी बारिश हो जाता है।
0: पर इधर टाइमिंग रहता है, दिन में नहीं आएगा, आएगा तो रात को आएगा।
1: और इधर है कि टाइम में कभी भी टपक सकता है, और ज्यादातर तो नुकसान करने के लिए आता है, फायदा के टाइम में तो कभी नहीं आता है।
0: वो तो नुकसान होगा ना, उधर क्या है कि सब लोग जिधर भी देखो पूरा खेत खलिहान खाली करके रखते हैं, पेड़ पौधे सब काट रहे हैं, और जिधर हरियाली रहेगी उधर बारिश उतना आने तूफान भी कम आता है। जिधर खाली जगह है तो पूरा बर्बाद करेगा। आएगा मेरा गाना,
1: ये गाना आज या कल में कभी भी आ सकता है, 5 से 7 के बीच में शाम को, और रिपीट 9 से 11 के बीच।
0: चलिए, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप, क्योंकि औरों का भी कॉल मिल जाए, मेहनत कर रहे होंगे बड़े बड़े।
1: हाँ हाँ, लेकर रहे गाना।
0: हाँ ठीक है मैम, थैंक यू,
1: वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल किया।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
0: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
0: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
0: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
0: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
13: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
1: किशोर कुमार देलवां बिरी
2: जी। कैसे हैं किशोर जी?
1: ठीक है।
2: तो क्या हो रहा था? अभी
1: काम कर रहे हैं।
2: तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: दुनिया से दूर जा रहा हूँ, माँ तेरे पास आ रहा हूँ।
2: सुनवाना भी है
1: जी।
2: नाम लेना चाहेंगे?
1: नितेश कुमार और रितेश कुमार
2: जी। प्ले करे गाना
1: जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका नुमाई चॉइस में कॉल की।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-93।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
5: सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
10: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
10: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
11: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
12: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
11: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
11: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
11: और 90-97-61-60-02।
13: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
14: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
16: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम से 90.4 FM।
15: जी, मेरा नाम
16: जी बिल्कुल सुनाएंगे गाना, नाम बता दीजिए अपना।
15: मैं जिला मुंबई से बोल रहा हूँ।
16: जी जी, क्या हाल चाल है?
15: ठीक है, अपने अपने नेम, आप कैसी हो?
16: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था?
15: अभी काम कर रहे हैं।
16: अच्छा अच्छा, तो गाना कौन सा सुन रहा है आपको?
15: गाना सुन रहा है कि आपकी, मैं पता है,
16: और सुनाना भी है।
15: सबसे पहले आपको मासूम कौशल ने कमरान भाई, अरमान भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, जगदीप भाई, लक्की भाई, दीप्ति जी, हिना जी,
16: तो प्ले करेगा ना आपके
15: जी?
16: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सो मैं कॉल।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: आपको मैं नमस्कार प्रणाम, सत्यकाल, कैसे हैं
1: जी? नमस्कार, बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: हम भी स्वस्थ हैं, बेकार हैं, बिंदास हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। कैसे हैं? आपका मौसम बहुत सुहाना है।
1: जी जी, मौसम तो काफी बढ़िया सुहाना है। तो आप लाल बहादुर बात कर रहे हैं? लाल बहादुर बात कर रहे हैं।
0: जी जी, आज दो आया है, आज निमंत्रण खाना खाने वाला।
1: जी जी,
0: लगा रहेगा हम और एक रहे हैं गाना है सर।
1: जी, गाना कौन सा है? गाना एक बार और बताइए।
0: जाना है नेता है।
1: अच्छा,
0: ठीक है।
1: जी जी, तो गाना बता दीजिए, कौन सा सुनना है आपको?
0: सफाई कर्मचारी।
1: सफाई कर्मचारी का?
0: जी
1: जी। और कोई जी?
0: हमारे हाँ, कोई भी सस्ती बाबू है सुनने वाले इंजीनियर कितने मिल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र सारे
1: कर रहे हैं गाना।
0: ठीक है जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
0: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
1: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है, तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
0: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स।
1: और सबसे खास बात, 100% जॉब गारंटी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
1: पता, छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
2: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7555-67666।
9: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: जी हेलो,
2: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से है।
1: जाना पहचाना नाम है निसार अहमद, लकड़ी दरगाह, जिला सिवान।
2: जी कैसे हैं निसार जी।
1: जी ठीक है, आप कैसी हैं।
2: मैं भी बढ़िया हूँ, क्या हो रहा था।
1: बस बैठे हुए हैं, आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं। बारिश हो रहा है क्या।
2: जी
1: बारिश हो रहा है क्या उधर, मौसम तो फिर गड़बड़ा गया।
2: नहीं आज तो नहीं हो रहा है, आज तो बढ़िया मौसम हुआ है, धूप निकला हुआ है।
1: धूप नहीं निकला है, बदली लग गया। गाना तो हम अपने पसंद से सुनते हैं हमेशा, और आपके पसंद से, आपके चॉइस से आज हमको गाना।
2: अभी आप जो सुन रहे हैं 12 से 12:30 तक सुनिएगा, आप मेरे पसंद के ही गाना सुनिएगा, तो अभी आप अपना ही पसंद बता दीजिए।
1: मैंने हम तो हमेशा अपना पसंद करते ही हैं, सही है।
2: नहीं देखिए, अलाव नहीं है अपने पसंद का गाना हेलो माय चॉइस में लगाना,
1: अलाव नहीं है।
2: नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर लिसनर इतना मेहनत करके कॉल कर रहे हैं और उसके बाद भी हम अपने पसंद का गाना बजाए तो फिर फायदा।
1: लिसनर के ही पसंद से ना आपको पसंद करना है। कॉल तो ठीक, क्या बोलते हैं, पूरी प्रोग्राम में इतना कॉल किया मगर एक भी है मेरा कॉल।
2: क्या करे, काफी सारे कॉल आते हैं, मैसेज भी रहते हैं।
1: कॉल नहीं, कॉल कम आता है मगर मैसेज ज्यादा।
2: मैसेज तो काफी सारे रहते हैं, कॉल्स भी आते हैं, लेकिन कॉल्स जैसे होता है कि उतना समय नहीं रहता है वेट करने का, उठाते टाइम बोले और तुरंत अगर कॉल है तो रिसीव कर लेते हैं।
1: कॉल कटा उसके बाद मैं तुरंत किया कॉल, मैंने रिसीव हो गया, रिंग होने लगा मगर कॉल रिसीव नहीं हुआ।
2: होता है।
1: चलिए कोई भी गाना लता जी का बहुत अच्छा गाना, मैंने जो हो पुराना गाना जो बजा दीजिए
2: लता जी के आवाज में।
1: जी लता जी का ये गाना है बेदर्दी पालमा, सही गाना है लता जी का, वही गाना बजा दीजिए।
2: चलिए
1: महबूब की गाना, महबूब की मेहंदी का गाना कोई हो उसमें बजा
2: दीजिए। चलिए,
1: क्योंकि मैं लता जी का गाना बहुत बहुत सुनता हूँ।
2: चलिए
1: चलिए, और सब ठीक है ना।
2: जी जी सब बढ़िया है।
1: चलिए बहुत बढ़िया
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, थैंक यू,
2: वेलकम।

0: दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे

0: अब विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पर ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हैं सही से ही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: ठक ठक
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:29 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो थोड़ा सा समझदारी के साथ ओल्ड इज गोल्ड या 90s के गाने की फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश हम आपको सुना सकें। ऐसा ना हो कि आप नए गाने की फरमाइश करें और हम उसको ना सुनाएं और आप इंतज़ार करते करते कार्यक्रम की समाप्ति तक इंतज़ार करते ही रह जाए। तो आप लोग पुराने गाने का फरमाइश करेंगे, आप लोग से ये विनती है। कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं और आप अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का। और पहला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, हम सफरोज अली आखिल टोला से और हमको गाना सुनना है और गाने के फरमाइश कौन से करते हैं। और ओह, काफ़ी प्यारे गाने का फरमाइश करते हैं, कहो ना प्यार है उदित नारायण की आवाज़ में। तो बिल्कुल आपके फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कुछ, तो और भी मैसेज देखा जाए। आगे मैसेज में लिखा गया है कि हेलो सर नमस्कार, मुझे गाना सुनना है। और इस मैसेज को पहुंचाते हैं नीतीश कुमार बस्त्रा, राजा लालगंज, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर नमस्कार, राधे राधे सर जी, मैं सुजीत कुमार बस्त्रा, राजा लालगंज से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में सुजीत जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो जी नमस्ते, सॉन्ग नहीं ये लगता दिल तेरे बिना, निशा शुक्लवा से। और आज कहते हैं कि सॉन्ग बदलने को मत कहिएगा, रोज़ रोज़ बदलते हैं। कोई बात नहीं, इस गाने को हम सुनाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम सुनो भैया, क्या हाल है, मैं मुस्कान गोपालगंज से। तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, कैसे हैं सर, सॉन्ग ओ शाइबा। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, श्रेया एंड मनीषा फ्रॉम अमो मौजम से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सर, समीर आलम जंगलिया से। बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, क्या हाल है समीर आलम। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सनो भैया, कैसे हैं, आशा चौहान विलेज सराफरा परसौनी से। और कहती हैं सभी दोस्तों को, पूछती हैं सभी दोस्त कैसे हैं। हेलो, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि बजा दीजिएगा सुनो भैया। बिल्कुल लेके करके फरमाइश पूरी करेंगे, अभी तो फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया ही नहीं है और आपकी फरमाइश तो प्ले करने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को करते हैं बीपुल सिंह गोपालगंज से, तो बने रहे हमारे साथ, आपकी फरमाइश प्ले होगी। फिलहाल हम आखिल टोला से गाने का फरमाइश करने वाले हमारे श्रोतागण सफरोज अली हैं और उनका पहला मैसेज पहुंचा हुआ है, तो इनके गाने को प्ले करते हैं और शुरू करते हैं कहो ना प्यार है उदित नारायण जी की आवाज़ में।

0: वही प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं हम सभी अलका याग्निक एंड उदित नारायण जी की आवाज़ में, कहो ना प्यार है टाइटल ट्रैक। बिल्कुल यदि आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, इसकी इसमें अपने फरमाइश सुन सकते हैं। बस आप लोग थोड़ा सा समझदारी जताते हुए पुराने गाने का फरमाइश करेंगे, 90s या ओल्ड इज गोल्ड। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और मैसेज पहुँचाते हैं हमारे श्रोतागण बस्त्रा राजा लालगंज उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने गाने का फरमाइश किए हुए हैं पवन सिंह की आवाज़ में, और गाने का बोल देते हैं, प्यारे में नहीं खी गोरी हम बेवफा। तो चलिए आपके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी। और यहाँ पे अभी गाने को लेकर मैसेज भी पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज कई रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट करने वाले सभी श्रोतागण थोड़ा सा सब्र करें कि करके सबकी फरमाइश हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी अगले फरमाइश पवन सिंह की आवाज़ में।
1: यकीन कर अपना

दामाद जी कुछ कहलन है का? मनोज बाबू के साथ रिश्ता से खुश तो बाड़ू ना।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
8: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
9: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
8: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 96-56-59-536 या 96-56-57-902।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे शो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो फरमा सकते हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और गाने का फरमाइश पहुंचा हुआ है निशा शुक्लवा से। इस गाने का फरमाइश करती हैं, नहीं यो लगता दिल तेरे बिना, तो इनके गाने हम प्ले करेंगे। और आगे कुछ मैसेज पहुंचा हुआ है तो देखा जाए। भोला शाह हेमटनिया से कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है हुस्न हाजिर है मोहब्बत के सजा पाने को। ओह बिल्कुल, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में भोला शाह जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है शिव सागर जी जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि छोटी छोटी बात पर नाराज मत हुआ करो, गलती हो जाए तो माफ़ कर दिया करो। अरे नाराज तब होना जब रिश्ता तो तोड़ देंगे, और ऐसा तब होगा जब हम दुनिया छोड़ देंगे। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। सुनो भैया और क्या हाल है। मैं शिव सागर दीवाना जम्मू एंड कश्मीर से, और मुझे सॉन्ग सुनना है। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो प्ले करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और मैसेज करते हैं शमीर आलम, मस्त बिंदास झकास। तो बिल्कुल आपका झकास है, तो हम भी आप सभी के साथ ही हैं झकास। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अभी मैसेज पहुंचा हुआ है। मैसेज पहुंचाने वाले लिखते हैं कि यूं पलके बिछा कर तेरा इंतज़ार करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं। जलकर हसरत की राह पर चिराग हम सुबह और शाम तेरे मिलने का इंतज़ार करते हैं। सुनो भाई नमस्कार, आप कैसे हैं, हम भी जुड़ गए हैं। हाजिरे लगा दीजिए, बिल्कुल बढ़िया आप सभी के साथ हैं। और इस मैसेज को करते हैं दिलीप राम जी और आगे मैसेज और अगले गाने के फरमाइश यहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो यहाँ पे मैसेज करती हैं शबीना खातून फ्रॉम दलुलिया से और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत है। बिल्कुल बढ़िया मस्त। कहती हैं कि आज मुझे सॉन्ग सुनना है एक, आएगा मज़ा अब बरसात का। तो बिल्कुल तो मज़ा तो आ ही रहा है और मज़ा के साथ साथ सजा भी आ रहा है, आंधी तूफान जब चल रही है तो। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुनो भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और एक मैसेज आपके शामिल कर दिए हैं, दूसरे भी मैसेज शामिल कर दिए हैं। गाने का फरमाइश रहा तो भी पूरा करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी, नहीं हो लगता दिल तेरे बिना।

कमाल के सॉन्ग रेडियो रेमझिम 90.4 एफएम पे काफ़ी प्यारा सुन रहे थे हम सभी। और यहाँ पे आगे कई मिसेज पहुँचे हुए और आगे मिसेज पहुँचा हुआ है गाने के फरमाइश और कह रहे हैं कि मेरा गाना कब बजेगा। तो बिल्कुल आपके गाने बजेंगे और वो भी अभी। इस मैसेज को करने वाले हमारे श्रोतागण हैं, इनका नाम है सुजीत कुमार बरसतारा राजा लालगंज मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं और गाने की फरमाइश करते हैं, तेरी बेवफाई ओ यारा जान पर मेरी बनाई। और आगे कुछ मैसेज देख लेते हैं फिर आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक्स सॉन्ग प्ले करने के लिए। और बिल्कुल हम ये नहीं चाहते हैं कि आप लोगों की फरमाइश रुके। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सर ये गलत बात है, न्यू गाना नहीं बजता है इस शो में। और हम तो हर रोज़ कहते ही हैं कि आप लोग 90s के गाने के फरमाइश करें या ओल्ड इज गोल्ड के फरमाइश करें, फिर भी आप लोग तो मानते ही नहीं हैं और कहते हैं कि ये गाना हमारा सुना दीजिए। अब इन्हीं को देखिए, गाने के फरमाइश करते हैं के साथ साथ कहते हैं कि गाने को चेंज करने को मत बोलिएगा, तब हम इसमें कर ही क्या सकते हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मैं रंजीत शर्मा, माय लवली वाइफ सीमा शर्मा विद माय लवली बेबी दिव्या शर्मा, हम लोगों को एक सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज़। तो आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में और आबाद सॉन्ग की फरमाइश तो होती है तो पूरा करने की कोशिश रहेगा, वैसे तो समय बहुत कम है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए अगले गाने को फरमाइश को हम प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश।

0: कमाल के सॉन्ग काफी प्यारा है। रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब और सोशल एसएमएस फरमाइश का। और समय 10:01 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम सुनो भैया, क्या हाल है, मैं मुस्कान गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का बोल दिया गया है, गजब के रोग जवानी में दे गई लंखिया, और सुनाना चाहते हैं आपको और सुनने वाले सभी रेडियो दोस्तों को, प्लीज सुना दीजिए। तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने। मुस्कान हम सभी रेडियो 94.4 एफएम पे एंजॉय करते हैं।
1: के मौसम बदल ना सके, हाल दिल के संभाले संभल ना सके, रोग ऐसन भैलबा बताई का हम, मन के महफिल से मस्ती निकल ना सके।

में राखब दिल के अरमान बना के, तोहके दिल में राखब दिल के अरमान बना के, अरे जान जबले रही कसम से तोहके जान बना के।

0: टुडे एमजीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश काफी प्यारा सॉन्ग मनोज तिवारी जी की आवाज में सुन रहे थे अभी हम सभी और गजब के रोग जवानी में दे गई लड़कियां और आगे मिसेस पहुंचा हुआ लिखा गया कि थैंक यू सो मच सनविया आपको धन्यवाद है रेडियो एमजीएम सुनने के लिए और आगे मिसेस पहुंचा हुआ है और आगे मिसेज में लिखा गया है कि नमस्कार सोनम भाई सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार बोलिएगा और मैं राजेश प्रसाद तो बिल्कुल राजेश जी आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे में से पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर हमारे यहाँ बारिश हो रही है बस्तरा राजा लालगंज उत्तर प्रदेश में और इधर भी मौसम थोड़ा बारिश वाला बना हुआ है और पता ना कब बारिश आ जाए। और आगे में से पहुंचा हुआ है अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे और गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है और गाने का बोल दिया गया है ओ शाइबा डेडिकेट सभी को और इस मैसेज को करती हैं सरिया फ्रॉम अमो मौजम से। तो चलिए इनके फरमाइश हम सुनते हैं एंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो एमसीएम 94 एफएम पे।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
0: रेडियो एमजीएम 94 एफएम पे इस प्यारे से सॉन्ग को सुन रहे थे हम सभी और शो चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे समय जो देखे तो 10:14 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और आगे देखे तो कई सारे मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं और गाने के फरमाइश भी हैं तो बहुत सारे तो नहीं प्ले कर सकते हैं अंतिम गाने प्ले करने की मौका है तो अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे और आगे देखा जाए कि इनका मैसेज है और जो पहले से मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे मैसेज देखा जाए तो यहाँ पे अगले गाने के फरमाइश और अगली गाने के फरमाइश किनका है। चलिए अगली गाने के फरमाइश हम भोला शाह जी की देखते हैं और गाने के फरमाइश करते हैं। कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है हुस्न हाजिर है मोहब्बत के सजा पाने को कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो चलिए इन्हीं के गाने को प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे और जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है थोड़ा सा सब्र करना है और समय की कमी है और जब समय की समाप्ति हो जाती है तो इसमें हम कुछ कर नहीं पाते हैं। फिलहाल अंतिम गाने प्ले करने का मौका रहता है तो प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते ही हैं। सो आज भी प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो आप सभी सुनते रहें रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से नमस्कार।

0: बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
7: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
11: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
12: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
11: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।

नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4। और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त आरजे सोनी, आप सभी के बीच हाजिर हो चुकी हूँ आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस के साथ। स्टूडियो घड़ी में 12:04 हो चुकी है और अभी से लेके शाम को 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे शो में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 98527788291 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करिए, हमें भेज दीजिए अपने नाम, पता और गाने की फरमाइश के साथ। और जो भी हमारे पुराने लिस्नर हैं उन्हें पता है कि अपनी गाने की फरमाइश जो है एक सप्ताह बाद करें और गाना ऐसा फरमाइश करें जो कि सुन के किसी को कोई परेशानी ना हो। कोई भी आपत्तिजनक गाने की फरमाइश बिल्कुल ना करिए। और भोजपुरी गाने की भी फरमाइश कर रहे हैं तो अच्छा गाना की फरमाइश करिए ताकि हर कोई सुन सके, किसी को ये ना लगे कि हाँ ये गाना मुझे नहीं सुनना है। या फिर अपनी फरमाइश बेशक आप कर रहे हैं लेकिन ध्यान रखें कि आपके अलावा और भी कई सारे लोग हैं जो कि रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने गाने की फरमाइश को करिए। और अगर गलत गाने की फरमाइश आती है तो मैं आपको फिर से दोबारा मौका नहीं दूंगी गाना चेंज करने का, फिर हम आज का जो आपकी फरमाइश है वो कैंसिल हो जाएगा, हम प्ले भी नहीं करेंगे। तो इस बात का भी ध्यान आप लोग रखिए, कॉल करें या फिर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप भी जब भी गाने की फरमाइश कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे हैं जो कि कोई भी गाने की फरमाइश कर दे रहे हैं, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं करिए। और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, रेडियो रिमझिम के नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, डायरेक्ट मैसेज करिए, अपने गाने की फरमाइश को सुनिए। या फिर उसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप इंस्टा नहीं यूज़ करते हैं तो आपके लिए कॉल का माध्यम है, नंबर है 72776066 पे कॉल करिए और जुड़िए अपने सो योर वॉइस योर चॉइस से। तो चलिए बिना देरी किए आज की शो की आगाज करते हैं एक प्यारे से गाने के साथ और आप सभी जब तक मैसेज करते हैं तब तक एंजॉय करते हैं हम इस गाने को। तो चलिए गाना प्ले कर दिया, एंजॉय करिए और आप सभी बताइए मेरी आवाज आप सभी के पास पहुंच रही है कि नहीं, ऐप कैसा चल रहा है जरूर बताइए और गाना कैसा लगा ये भी बताइए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: हेलो
1: हेलो,
0: मेरे साथ डांस करोगे?
1: नहीं।
0: ए, जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। अब तुम वही करोगे जो

0: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँच चुके हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज पहुँचे हुए हैं। गोविंद कुमार गुप्ता जुड़ चुके हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेहताब सिद्दीकी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लिख रहे हैं कि बहुत दिन बाद जुड़े हैं, नेट ख़त्म हो गया था मेरा और रिचार्ज भी नहीं था इधर, इसलिए मैसेज नहीं कर पा रहे थे। कोई नहीं, अभी शो से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लिख रहे हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? और मैं भी ठीक ठाक हूँ, क्या हाल चाल है? मैं मेहताब दुबई से, और हमको भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। और मेरा दोस्त लोग है, दोस्त लोग सुनना चाहते हैं, गुड्डू है और अभी दुबई से हैं सभी लोग। और लिख रहे हैं कि गर्मी पड़ रहा है उधर, और उधर का मौसम अभी सही है, बारिश हो रहा है उधर तो, और उधर का मौसम अभी कैसा है बताइए। तो हमारे यहाँ तो मौसम आज काफ़ी कड़ाके वाली धूप हुई है, गर्मी भी है, एक दिन पहले बारिश हुई थी। और बहुत बहुत स्वागत है मेहताब जी गाने की फरमाइश से, तो गाना का नाम लिख के भेज दीजिए, कौन सा गाना आखिर आपको सुनना है, हम आपके गाने की फरमाइश जो है ज़रूर प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ बढ़ेंगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ, तो मैसेज है मनीष प्रसाद जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका भी, फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, और लिख रहे हैं कि गुड इवनिंग मैम, क्या हाल चाल है? सब अच्छा है, अच्छे ही होंगे, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे आपका। और मैसेज करने वाले हैं वारिस खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रहिए हमारे साथ। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ विमल कुमारी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि हाय नमस्ते, आपका इंतज़ार कर रही थी और अब बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अरमान हुसैन जुड़ चुके हैं रेवती बाज़ार बैकुंठपुर गोपालगंज से, और गाना सुनना है हम ही पिया जी के पतरी तिरिया हुआ, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ ऋषिकेश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। और विजेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे आगे, यहाँ थावे से जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मन राधा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामविलास प्रसाद हैं बलमपुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लिख रहे हैं कि अच्छा चल रहा है अब बिल्कुल। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं नमस्ते जी, संतोष शाह हैं टेलर मास्टर जी, न्यू फैशन टेलर रेवती बाज़ार न्यू बैकुंठपुर से। लिख रहे हैं कि गाना सुनना है सीसा के दिल बना रहे, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं हेलो सुनी जी, गुड आफ्टरनून, मैं भी जुड़ गया हूँ, श्याम बहादुर है देहरादून से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और वॉइस पहुँचा हुआ है, और नाम मेंशन नहीं है, नाम ज़रूर बताइए आप कौन है और कहाँ से। और शंभू यादव है पुलिस लाइन के सामने से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ संजय यादव दुबई से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, फरमाइश है तो बिल्कुल प्ले करने की कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, आई होप आर यू रियली गुड एंड ऑल लिसनर ऑल्सो फाइन और लिसनिंग टू योर प्रोग्राम फ्रॉम सऊदी अरब। और सऊदी अरब से सोनू जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शो में। और यहाँ दिनेश मिश्रा जुड़ चुके हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए आपके शो से, हाजिर लगा दीजिए। और आगे लिखते हैं कि चांद ने की होगी सूरज से मोहब्बत, इसलिए तो चांद में दाग है, चांद ने की होगी सूरज से मोहब्बत, इसलिए तो चांद में दाग है, मुमकिन है चांद से भी हुई होगी बेवफाई, इसलिए तो सूरज में इतना आ गए हो। और यहाँ इरशाद मास्टर धनाव से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है इरशाद जी आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि भरत शर्मा की आवाज़ में गाना चाहिए साड़ी, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं, नाम मेंशन नहीं है तो नाम ज़रूर आप मेंशन करिए कौन है और कहाँ से। बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और उससे पहले यहाँ लाल सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी लखनऊ उत्तर प्रदेश। और आज की अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है सत्येंद्र मिश्रा इराक से जुड़े हुए हैं, और इनको सुनना है गाना, तो चलिए प्ले कर रहे हैं, वॉइस पहुंचा हुआ है, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: मुझे गुड आफ्टरनून में, मेरा नाम सत्येंद्र मिश्रा है, मैं करबला रिफाइनरी इराक से बात कर रहे हैं मैम, मुझे गाना सुनना है ईश्वर का सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार प्लीज मैम गाना सुना दीजिए, और ये गाना आपको और जितने रिमझिम सुनने वाले दर्शक सभी को सुनवाना चाहते हैं और भी मित्र हैं जिनका नाम सुग्री कुमार पार, शैलेश कुमार, संजीव कुमार पांडे, मुन्ना ठाकुर, अमरुसलेमगढ़ के रहने वाले हैं, इराक में हैं। प्लीज मैं गाना सुना दीजिएगा।

0: थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए। गाना हम सुन रहे हैं। थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
2: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
1: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें आशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
2: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
3: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
4: ठीक बा भैया।
5: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
3: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
5: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
3: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
5: एकर बढ़िया विकल्प ये है, फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
3: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जाना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलु भाई जानकारी दे के।
5: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना हा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाएं। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज है, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि वह परिवार और वो पारिवारिक सॉन्ग बहुत ही अच्छा है। मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी के फिलहाल दुबई से सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम को, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लिख रहे हैं कि दिल तो दिल है कल बदल जाएगा, दिल तो दिल है कल बदल जाएगा, कुछ दिन रोएगा फिर संभल जाएगा, हम क्यों करें जिक्र अपने बुरे हाल का, देखते देखते ये वक्त भी निकल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है दुबई से मेहताब सिद्दीकी जी का, और इनको सुनना है गाना हरदी लागे जान के। तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी, एंजॉय करिए अपने गाने को, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM को।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारा मैसेज पहुंचा हुआ है, और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैं, मेरा भी एक सॉन्ग है बजा दीजिए। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। और मैसेज करने वाले हैं रंजीत चौहान जी चौधरी दुबई से। बहुत बहुत स्वागत है रंजीत जी आपका, और गाने की फरमाइश है तो गाने का नाम लिख के भेज दीजिए कि कौन सा गाना सुनना है, या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए गाने का नाम पता और अपने नाम के साथ, फिर को हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। सुन्यासी रंजन बाबा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, लिख रहे हैं सोनी मैम हम भी जुड़ गए हैं, हमारा भी हाजिर लगा दीजिए। बिल्कुल आपकी हाजिर लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है। हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जिम में। जी गाना सुनवाएंगे, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
1: आरोही कुमारी गोपालगंज से।
0: आरोही
1: अंजलि।
0: अंजलि जी आपकी आवाज धीरे आ रही है थोड़ा, कहाँ पे हैं आप?
1: गोपालगंज से बोल रहे हैं अंजलि कुमारी
0: जी। तो क्या हो रहा था अंजलि जी?
1: मेरी बात है अभी।
0: अच्छा
1: आपकी
0: जी? हाँ मेरा तो हो गया है, आप बताइए आपका हुआ है या नहीं अभी?
1: हमारा भी हो गया है।
0: तो तबीयत पानी कैसा है, सब बढ़िया?
1: सब बढ़िया है, अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
1: गाना सुनना है तो मुझे बता है ऐसे पानी में रंग के जैसे।
0: फिर से बताइए।
1: तो मुझे बसा है ऐसे पानी में रंग के जैसे, तेरे साथ और दरिया में धार के जैसे।
0: जी तो गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: हाँ सबसे पहले आपको, हम है और सिर्फ सुनवाने की वो हम
0: गया। चलिए तो प्ले कर दिए हैं गाना आपकी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सो में कॉल की।
1: थैंक यू,
0: वेलकम।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो रंजीत चौधरी हैं, लिख रहे हैं कि दिल देखे जख्म ले ले वानी दिल, कमल के आवाज़ में गाना सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आपकी यानी कि फरमाइश से प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, मनीष शर्मा जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि गाना बजा दीजिए, बिल्कुल आपकी यानी कि फरमाइश से प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम आपको बता दें कि अभी आपका एक सप्ताह नहीं हुआ है, आपका गाना जो है वो मैंने शनिवार को प्ले किए थे, तो एक सप्ताह बाद ही अगली गाने की फरमाइश पूरा कर सकते हैं। कल आप अपना फरमाइश भेजिएगा, हम ज़रूर प्ले करेंगे। और यहाँ सन्यासी रंजन बाबा लिख रहे हैं कि कभी ये सोचकर मत मन छोटा मत करना, कभी ये सोचकर मन छोटा मत करना कि अंग्रेजी ही नहीं आती, अंग्रेजों को भी कहाँ हिंदी आती है। बिल्कुल सही। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन बाबा जी। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली गाने की फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है, शीशा के दिल बनल रहे टूटल बिखर गए। और गाने की फरमाइश पहुंची है न्यू फैंसी टेलर रेवती बाजार न्यू बैकुंठपुर गोपालगंज बिहार से, संतोष शाह जी है टेलर मास्टर। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दिए, इंजॉय करिए अपने गाने को, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM को।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो टिमटिम 90.4 एफएम में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है लिख रहे हैं कि वाह क्या गम है। सीहा गम तो है सबकी ज़िंदगी में है, किसी को पाने का गम है तो कभी किसी को खोने का गम है, गम ही गम है और गम में हम सब हैं। और मैसेज करने वाले हैं मनीष पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है। लिख रहे हैं हेलो हाय नमस्कार, वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मनीष रजाक हैं फाजिलनगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और लिख रहे हैं कि मेरा गाना कब बजेगा। तो कल ही हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले किए हैं और अगला गाना आपका एक सप्ताह बाद यानी अगले बुधवार को प्ले होगा। तो शो से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि मैं मनी और गाना भेज दिया हूँ, गाने का लिंक बिल्कुल आपके गाने की लिंक पहुँच चुकी है, आपकी बारी आने पर हम आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ सन्यासी रंजन बाबा जी हैं, लिख रहे हैं कि संतोष सर टेलर मास्टर जी आपको दिल से धन्यवाद है, बहुत ही अच्छा गीत बजवाया है आपने हो। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है इंस्टाग्राम से, और मैसेज है प्रसन्नजीत जुड़े हुए हैं और इनको सुनना है गाना नहिया लागे नैना लागे नेह के सागर बिंदिया लागे चांद। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे और मैसेज है इरशाद मास्टर जी की तरफ से, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी जिन्हें ये गाना बजवाया उन भाई को, दिल से शुक्रिया इरशाद मास्टर रोशन टेलर धनाज से। और आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्कार, मुझे भी गाना सुनना है। और संजय यदुवंशी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और गाना सुनना चाहते हैं। और आपके जो गाने की फरमाइश है नीतीश कुमार जी, ये गाना हम आपकी नहीं प्ले कर सकते, हम आपको पहले ही बोले हैं कि कोई भी ऐसा गाना नहीं फरमाइश किया करिए जिससे लोगों को सुन के आपत्तिजनक हो। तो आपका जो गाने की फरमाइश है वो जातिवाद गाना है, तो बिल्कुल हम नहीं प्ले कर सकते। गाना ऐसा फरमाइश करिए आप लोग जिससे सुन के किसी को आपत्ति नहीं हो, कोई भी किसी को कोई परेशानी नहीं हो। तो आपकी जो गाने की फरमाइश अगर चेंज कर सकते हैं समय रहते तो प्ले करेंगे, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगी, पहले ही मना किए थे हम आपको। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि अगर किसी लड़के के पास अचानक से घड़ी अंगूठी बाइक सोने की चैन आ जाए तो समझ लेना उसकी शादी अभी तुरंत हुई है। ओहो, और वो अगर पहन के ही ना निकले तो फिर कैसे पता करे, सनासी रंजन बाबा जी ज़रूर बताइए। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू, हिंदी क्लासिकल गाने बजाते हैं यह तो बिल्कुल अच्छी है, लेकिन इस टाइम लगता है कि भोजपुरी क्लासिकल का समय चल रहा है। रेडियो रिमझिम 90.4 FM के स्टूडियो में थैंक यू फरमाइश करने के लिए आप लोगों को। और मैसेज करने वाले हैं सऊदी अरब से सोनू जी, जी हाँ, और अभी जितने भी भोजपुरी गाने बजे एक से बढ़ के एक थे। और जो लोग बोलते हैं कि भोजपुरी गाने अच्छे नहीं होते हैं उनके लिए ये सुनना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शो में जुड़े बढ़ेंगे आगे। यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सासों में रहकर तुम हमारे मेहमान बन गए, सासों में रहकर तुम हमारे मेहमान बन गए, मुस्कराए ऐसे कि तुम हमारी पहचान बन गए, लोग पास रहकर भी हमारे ना बन सके और तुम दूर होकर भी हमारी जान बन गए। और इस मैसेज के साथ जुड़े हुए हैं सोनू कुमार जी दुबई से और लिख रहे हैं कि अभी रेडियो रिमझिम सुन रहा हूँ, हमारा भी हाजिर लगा दीजिए, बिल्कुल हाजिर लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम मेरा भी गाना बजा दो, बिल्कुल आपके भी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, और वी के रानी जुड़ी हुई है, भरत शर्मा की आवाज़ में गाना सुनना है, लिख रहे हैं कि जान को लिखना ना हो इसलिए समझिए नहीं तो रूठ के चले जाएंगे हो। और राय ऑटो शॉप राजापुर से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश जो हमारे पास है वो है, मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है। और गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं बलमपुर उत्तर प्रदेश से रामविलास कंवरिया जी, तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दी, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पर ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हों सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और

0: धन्यवाद गाना बजाने के लिए मेरा। और यहाँ इरशाद मास्टर जी हैं धनाव से, लिख रहे हैं कि वाह सोनी जी बहुत खूब। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, मज़ा आ गया गाना सुन के, मिलो ना तुम तो हम घबराएं। और मैसेज करने वाले हैं सोनू जी दुबई से। और आगे बढ़ेंगे तो एक और यहाँ मैसेज है, सोनू सऊदी अरब से है, लिख रहे हैं कि नमस्कार रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, मैडम जी ये कितना अच्छा होता कि आज मैं सबके घर जाकर उनको थैंक यू कह पाता, कहकर आता, जिन लोगों ने आज इतने अच्छे अच्छे गाने की फरमाइश किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी हाँ, ऐसे ही गाने की फरमाइश करते रहिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है इतने अच्छे अच्छे गाने की फरमाइश करने के लिए। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं हेलो हाय नमस्कार मैडम जी गुड आफ्टरनून। और मैसेज करने वाली है प्रीति रदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से, बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका भी। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले यहाँ एक और मैसेज है, और संजय यादव हैं दुबई से, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम, और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ राकेश भारती जुड़ चुके हैं बक्सर से, लिख रहे हैं सुनिधि मेरा भी हाजिर लगा दीजिए, बिल्कुल लग चुकी है आपकी हाजिरी, बहुत बहुत स्वागत है, लिख रहे हैं कि साथ में आप भी गुनगुना दीजिए, और मेरा शादी में आना है सुनिधि जी, आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी शादी में आ सके। और यहाँ एमडी महमूद जी जुड़े हुए हैं केरला से, बहुत बहुत स्वागत है, लिख रहे हैं कि हमारा भी हाजिर लगा दीजिए, बिल्कुल आपकी हाजिरी लग चुकी है। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है। हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जी में।
1: हम ठाबे से बोल रहे हैं नमाज प्रसाद
0: जी। जी का हाल चाल बा?
1: हाल चाल ठीक बा। गाना फॉर्मूला ने समा तेरा गोल बादल ना पूरा तो हर दिन पूरा बजा दिए
0: जी, बिल्कुल बता दी कौन गाना सुने के बा। अच्छा गा के बंसी बजौला हमके बिसुरैल, ये गाना रहे। और सुनाए के भी बा,
1: सब कुछ सुने, बीमार के मैसेज आइले और गाना के मैसेज आइले और सब कुछ सुने।
0: चलिए तो गाना प्ले कर दे बनी।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सो में कॉल करेंगे।

0: कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707 0675।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि गुलाब के फूल को तोड़ा नहीं जाता, गुलाब के फूल को तोड़ा नहीं जाता और दिल से प्यार करने वाले को छोड़ा नहीं जाता। और आगे लिखते हैं कि गुलाब से पूछो कि दर्द क्या होता है, गुलाब से पूछो कि दर्द क्या होता है, देता है पैगाम खुद को मोहब्बत का, खुद को कांटों में रहता है, खुद तो कांटों में रहता है। और मैसेज करने वाले हैं वारिश खान जी कतर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। आगे बढ़ेंगे एक और यहाँ वॉइस पहुँचा हुआ, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गोल्डन टेलर जुड़ चुके हैं टीन फेरिया से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है दुबई से संजय यादव जी का, और इनको सुनना है गाना। तो लिख रहे हैं कि मेरी सिस्टर का शादी है तो मुझे गाना सुनवा दीजिए। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, और गाने की फरमाइश है तारों का चमकता। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश प्ले कर दी, एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: प्रसाद क्लिनिक।
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है, लिख रहे हैं कि दुनिया बड़ी जालिम है, हर बार छुपाना पड़ता है और दिल में हजारों गम है, फिर भी मुस्कराना पड़ता है। मेरा नाम है रजीव प्रमाणिक और मैं झारखंड जमशेदपुर के रहने वाला हूँ। मुझे हिंदी गाना सुनना है, पहली मोहब्बत फिल्म से गाने का बोल है मेरी सांस सांस मेरी यार के लिए। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है, ओहो लिख रहे हैं कि इग्नोर करना तो कोई आपसे सीखे। और मनीष शर्मा जी है गाने की फरमाइश के साथ, तो ऐसा बात नहीं है, आपकी जो गाने की फरमाइश है वो हम शनिवार को पूरा किए थे और अगली फरमाइश शनिवार को ही पूरा करेंगे। हम आपको ये दूसरी बार बोल रहे हैं, अभी आपका एक सप्ताह नहीं हुआ है तो हम आपकी गाने की फरमाइश जो है नहीं प्ले कर सकते। शो से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। और इग्नोर हम किसी को नहीं करते, सबको ध्यान में रखते हैं। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, MD महमूद अंसारी जुड़ चुके हैं लखनिया ढाला से और लिख रहे हैं कि आप कैसे हो। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है रेवती बाजार बैकुंठपुर गोपालगंज से, गाने की फरमाइश करने वाले हैं अरमान हुसैन जी। तो चलिए आपकी फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं। और फिल्म है पटना से पाकिस्तान का गाना सुनना चाहते हैं हम ही, पिया जी के पतरी तेरी हवा। तो आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और यहाँ मनीष प्रसाद जी हैं, लिख रहे हैं कि मनी के गाना कहे नीखे बाजत। तो मनीष जी के अभी एक सप्ताह नहीं के भाई, लेकिन से नहीं के बाजत, जैसे ही एक सप्ताह हो ही प्ले करें और बढ़ेंगे आगे। यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि आपका आवाज़ अहा लगा मैडम जी साइड से। और महमूद अंसारी जी हैं लखमिया ढाला से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम थोड़ा पानी पी लीजिए और खुल कर गुनगुनाइए, बहुत ही अच्छा लगा। दिनेश मिश्रा है दिल्ली से। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा गाना कब बजेगा। तो आपका भी गाना बजेगा। और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं नीतीश कुमार जी, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। आपकी बारी आने पर हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं हेलो मैम, राधे राधे, मैं पाजी यूपी चौहान से और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। बिल्कुल लग चुकी है आपकी हाजिरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बनी रही हमारे साथ में। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश यहाँ कॉल के माध्यम से पहुँचा हुआ है तो प्ले करेंगे। और यहाँ वारिस खान जी हैं और लिखते हैं कि नहीं निकलते हैं दिल से वो लोग जिनके जिनसे एक बार मोहब्बत हो जाए, नहीं निकलते हैं वो लोग दिल से जिनसे एक बार मोहब्बत हो जाए। और ये कहने की बातें हैं कि भुला दो उनकी बातें को और कहने की बातों को। जी हाँ बिल्कुल, ये कहने सुनने की बातें हैं, एक बार कोई भी बात हो चाहे वो मोहब्बत की हो या फिर कुछ भी बातें हो, आदमी भूलता नहीं है। यही होता है कि बस उसे याद करना आदमी छोड़ देता है। और बढ़ेंगे अगली फरमाइश, यहाँ कॉल के माध्यम से पहुँचा हुआ है तो सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है हमारे पास। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
6: ऋतिक कुमार बात कर रहे हैं।
5: ऋतिक कुमार दोपुर साहब दिन टोला से जी, क्या हाल चाल है ऋतिक जी?
6: Okay.
5: आपकी आवाज कट रही है।
6: ठीक है आवाज
5: जी।
6: ठीक है,
5: तो क्या हो रहा था ऋतिक जी?
6: गाना सुनना
5: जी। बिल्कुल बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
6: पवन सिंह के।
5: पवन सिंह का कौन सा गाना?
6: कमारिये लॉलीपॉप लगे।
5: लॉलीपॉप लगे लो। अच्छा, सभी लिस्नर को डेडिकेट है। तो चलिए प्ले कर दिए गाना आपकी।
6: ठीक है
5: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल के।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 90971660।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289225767 या 9774861।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो मनीष पांडे हैं, लिख रहे हैं कि हमार गाना बाजी, बिल्कुल बाजी का है ना बाजी, अगर गाना के फरमाइश बात तो भेज दी, राउर बारी आते ही हम राउर गाना के फरमाइश भी पूरा करें। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि फूल है गुलाब का मेरी जान से, ओहो फूल है गुलाब का मैं इसे तोड़ेंगे नहीं, बहुत प्यार करते हैं तुमसे तेरे नाम से कभी छोड़ेंगे नहीं। और वर्ष खान जी हैं कतर से, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं हेलो हाय नमस्कार प्रणाम गुड आफ्टरनून जय माता दी सोनी जी, और सबको बोल दीजिएगा, बिल्कुल बोल दिया। और लिख रहे हैं कि लली पॉप लागेलू नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भाई को, जय माता दी। शिव सागर दीवाना जी हैं जम्मू एंड कश्मीर से, और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, गाना लॉलीपॉप लागेलू पुरानी याद ताज़ा हो गई। और मैसेज करने वाले हैं सोनू जी शौदी से, सॉरी दुबई से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है गाने की, रंजीत चौरसिया है दुबई से जुड़े हुए हैं, और इनको सुनना है गाना नीलकमल की आवाज में दिल दे के जख्म ले ले बानी। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दी, आवाज पहुंचिए, अपने गाने को एंजॉय करिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो रंजीम 90.4 FM पे।

0: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
1: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहाँ मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
1: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 800-222-1969 या 911-7018-3500।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
3: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ेंगे, मैसेज है, लिख रहे हैं कि दिल तोड़ा है तो चिता भी जला देना, दिल तोड़ा है तो चिता भी जला देना, कफन ना मिले तो दुपट्टा उठा देना, अगर कोई पूछे कि क्या बीमारी थी तो सर झुका के मोहब्बत बता देना। और लिख रहे हैं कि मेरा नाम संजीव ठाकुर है, मुझे और गाना सुनना है, मैं झारखंड के जमशेदपुर के निमडी निवासी हूँ, मुझे फूल और कांटे फिल्म का गाना सुनना है, आई लव यू, और गाना सुना दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल आपके गाने की फरमाई से प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है, लिख रहे हैं, हेलो जी नमस्कार मैडम जी, राधे राधे, कल मेरा गाना नहीं बजा था तो आज प्लीज़ बजा दीजिएगा गाना मेरा। और गाने की फरमाइश है, बजरिया में राजा पिटाजी अंकित अग्रवाल की आवाज़ में है, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं सत्यम कुमार जी, राजा लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं, थैंक यू मैम, और मेरा मित्र भी सुन रहे हैं गाना को, विकास चौधरी हैं और साथ में मुन्ना जी हैं, और मैसेज करने वाले हैं रंजीत चौधरी जी दुबई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्कार, हम लोग भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, सुन रहे हैं कार्यक्रम को, अच्छा चल रहा है, उमा शंकर सिंह जी हैं साथ में इनके, हैं अंतिका सिंह, अर्चित सिंह, रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे तो अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, लाल सिंह है लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और इनको सुनना है गाना तौबा कैसी ये नादान घुंघरू पायल की, और डेडिकेट है प्रिंस, सुहानी, चिंकू एंड ऑल रिमझिम लिसनर को। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुंच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
0: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
1: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
0: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
0: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो मैसेज पहुंचा हुआ है, दिलीप कुमार ठाकुर जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं नमस्कार जी प्रणाम, मैया पुटुमाली पंजाब से जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं हमारा भी हाजिर लगा दीजिए, बिल्कुल लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है। लिख रहे हैं कि टैलेंट की क्या बात करते हो साहब, हमारे भारत में तो लड़के मोबाइल की बैटरी जीप से चाट कर बता देते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है। और बढ़िए आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड गाना बहुत ही अच्छा लगा, गीत चला घुंघरू पायल के, उमाशंकर सिंह जी हैं रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम मुझे भी गाना सुनना है, सुना दीजिए। और एगो सेनुरवा बिना अंकुश राजा की आवाज़ में गाना सुनना चाहते हैं। रमेश कुमार जी जुड़े हुए हैं लालगंज बीजापुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से। जी कैसे हैं?
1: बढ़िया है, अपना बताइए।
0: हम भी बढ़िया हैं।
1: जी
0: तो लंच हो गया?
1: है क्या?
0: बोले लंच हो गया?
1: हाँ नहीं अब होगा लंच।
0: अच्छा अब होगा।
1: हाँ
0: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
1: नीलकमल की आवाज में ये बर्बाद को के दिए लूं आराम से।
0: बर्बाद होनी रानी तोहरा नाम से, वो वाला ना?
1: यही। हाँ
0: और सुनवाना भी है
1: जी। प्रमुख जी, राजेश गौतम, अनिल जी छोटपुर से, और जितने रेडियो सुना है उनको और आपको और रेडियो रेडियो टीम को।
0: चलिए तो प्ले कर दिए गाना आपकी।
1: जी
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल किया।

0: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज तो एक से बढ़ के एक सुपर हिट भोजपुरी गाना बजाता सुन के मिजाज गदगद हो जाता। और मैसेज करे वाला बानी सन्यासी रंजन बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है इंस्टाग्राम के माध्यम से। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका राजीव प्रमाणिक का, और इनको सुनना है गाना मेरी सास सास मेरे यार के लिए। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा, और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये दो फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पे जो बनने वाली हूँ सही से ही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री
2: कहाँ पर?
1: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
2: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
1: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
2: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं सो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है लिख रहे हैं कि बन के अजनबी मिले हैं रेडियो के सफ़र में, इन यादों को हम मिटाएंगे नहीं, अगर याद करना फितरत है आपकी तो वादा है हम भी आपको भुलाएंगे नहीं। नमस्ते नमस्कार डियर सोनी बहन जी, कैसी हैं जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से सभी दोस्तों को मेरा सलाम बोल दीजिएगा। बिल्कुल बोल दिया। और मैसेज करने वाले हैं रेडियो फैन मोहम्मद इरफान जी फ्रॉम दुबई से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे लिखते हैं कि अच्छी है बातें तेरी अच्छा है नाम तुम्हारा, अच्छी है बातें तेरी अच्छा है नाम तुम्हारा, है दिल मेरे रहने दिल में रहने वाला, बता कैसा है हाल तेरा, और दिल में है यादों तेरी वरना होठों पे बस नाम तेरा, मैं मेरे दिल में रहने वाले आपका प्यार भला सलाम मेरा। और इस मैसेज के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि सोनी बहन जी स्पेशल में आपके लिए भूजा भेजे हुए हैं, तो अभी खाना खाने का टाइम है और मैं अभी दोपहर में भूजा नहीं खाती हूँ। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ गुलाम हुसैन जुड़ चुके हैं वेस्ट मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत है गुलाम जी आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज है, कृष्ण मोहन जुड़ चुके हैं सिपाही खास से, लिख रहे हैं हमारा भी हाजिर लगा दीजिए। बिल्कुल लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरे साथ में मेरे चाचा सुन रहे हैं और मेरा भाई भी यश चौधरी जुड़े हुए हैं दुबई से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि ये गाना है सुना दीजिए। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है, बनी रही है हमारे साथ में। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम विकास कुमार बोल रहे हैं दुबई से और हमें भी गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, वेट करिए दोपहर समाचार के बाद आप सभी की फरमाइश जो अभी अभी पहुंच रही है प्ले करेंगे। और यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है पुलिस लाइन के सामने से शंभू यादव जुड़े हुए हैं, तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, इंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए 90.4 FM रेडियो रिमझिम को।
1: जिला गोपालगंज बिहार पुलिस लाइन के सामने से मेरे को गाना सुनना है खलनायक पिक्चर का, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और मैं कुछ दोस्त हैं जिनका नाम लेना चाहूँगा उनको सुनाना चाहूँगा।

चाहूँगा, जैसे कि हमारी राजेंद्र प्रसाद जी, राहुल जी, अनमोल जी, टुनटुन जी, किशन जी, प्रभु जी और एक डरावा गांव से शंकर जी, हलवाई हमारे बड़े भैया सलंदर भैया, थावे से कैंची निशान लगाते हैं वो भाई, और हमारे और भी जो अदर कंट्री मेरे भाई लोग रहते हैं उनको भी सुनाना चाहूँगा। तो प्लीज़ सोनी जी मेरा ये गाना चला दीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो मैं फिर से एक बार करना चाहूँगा, खलनायक पिक्चर का गाना सुनना है, मैं हूँ खलनायक। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक, नायक नहीं मैं खलनायक हूँ, लोगों का दुखदायक हूँ, ऐसे कुछ गाना है ना। तो हर हर महादेव चला दीजिएगा।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, हमारे गाना चलाने के लिए, गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत प्यार भरा धन्यवाद। और आप कहती हैं कि हमारा आवाज बताए कैसा है, तो पहले जब आई थी तो तीखी मिर्ची जैसा आवाज था, अब तो बिल्कुल मीठा कोयल के जैसा आवाज है आपका। तो धन्यवाद आपका गाना सुनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
6: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।

0: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि शहर बदलने से मेरा किरदार नहीं बदलता, यानी तेरे सीने में धड़कता हुआ अंगार नहीं पिघला, न जाने कब तेरा फोन आएगा और जाए किसी इंतजार में, इसलिए आज तक हमने अपना नंबर नहीं बदला। और रेडियो फैन मोहम्मद इरफान जी है दुबई से। बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमने महमूद जी केरला से, मेरा वॉइस भी प्ले कर दीजिए। बिल्कुल आपकी वॉइस भी प्ले करेंगे। और अब समय हो गया है दोपहर समाचार का, तो अगली फरमाइश जो है दोपहर समाचार के बाद ही लेंगे। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय गुड आफ्टरनून, बजाजी रोड लालगंज से एमडी नौशाद सदाब और साथ में है निशाद जी, रिजवान, अभिनंदन टेलर के सभी वर्कर हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि और गाना सुने मेरी जान तू भी बदल गई लू। और गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं यश चौधरी जी दुबई से, तो आपके भी गाने की फरमाइश जो है दोपहर समाचार के बाद प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए। बिल्कुल आप सभी की फरमाइश जो है दोपहर समाचार के बाद प्ले करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रंजन को, कहीं मत जाइए। और फिर मिलते हैं आप सभी से यहीं पर दोपहर समाचार के बाद, तो सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम को।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक क्षण बताया जब भारत ने शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
1: भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया। किया है। श्री घई ने बताया कि भारत के 65% से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति दर्शाने वाली रंगोली बनाई। देशभक्ति के विषयों और राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी इन रंगोलियों को एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। इसमें स्थानीय निवासी और महिला प्रतिभागी शामिल थीं। आज के ही दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्याधुनिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
3: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम जलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
4: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए ना प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। ये अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुण, भुजंगक्ष्व राज्यम समृद्धम, मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम, भव सव्य साचिन।
3: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम जलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है। मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था। 243 सदस्य विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। श्री विजय ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। कल उन्होंने पार्टी विधायकों की सूची और कांग्रेस का समर्थन पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत दिखाने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसीके नेता थिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद श्री विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के दो विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे

0: सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरलम में नए मुख्यमंत्री का नाम पार्टी आलाकमान तय करेगी। हालांकि आज तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बैठकें कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों का उद्देश्य सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के विचारों को जानना और उनकी मंशा को दल के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है। राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम रविवार तक तय होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल के नया मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे अकालों पे विराम लग सकता है। उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधानमंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है। उसी बैठक में औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता का चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिल सकता है। राजनीतिक महल की नजर एक और बात पर भी टिकी हुई है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ते में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व चाहते हैं कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो, साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते हैं दल। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे कभी नहीं झुके। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन किया है। कल रात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को हटा दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
3: आज से 1 दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
0: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात।
4: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
9: कॉल करे 87-894-18744।
10: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
11: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
10: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
11: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
10: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
11: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
12: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
10: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
14: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
13: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
14: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोप्राइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
13: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
15: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
9: सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
9: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
16: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम।
16: सुनो दिल से।

0: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेजों में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हूँ सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए जले के बाद।
2: ठीक बा भैया।
3: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
1: ऐसा का है, जरावला से काहे मना होता।
3: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
1: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बताओ तू हमरा के एक बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
3: एक बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसा पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
1: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा करी भाई जानकारी दे के।
3: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
12: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 8570-32042 पे।
13: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
14: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
13: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे
2: घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
15: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क 99 393 65 930।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे शो में जुड़ सकते हैं और 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं नीतीश कुमार जी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह में ही बोले थे कि हम आपके गाने की फरमाइश जो है नहीं प्ले करेंगे, गाने की फरमाइश जो है चेंज कर दीजिए, और अब अगर आप चेंज भी करिएगा तो हम आपके गाने की फरमाइश जो है नहीं प्ले करने वाले हैं। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, सत्यम कुमार जुड़े हुए हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है। एक और यहाँ मैसेज है और मोहम्मद इरफान है फ्रॉम दुबई से, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और यहाँ बढ़ेंगे आगे तो एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि और लिख रहे हैं कि भैया आपको तीखी मिर्ची बोलते हैं मैडम जी। और मैसेज करने वाली है प्रीति रदास, विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सीवान से। तो ऐसा क्यों बोलते हैं बताएं, मैं तो तीखी मिर्ची की तरह तो नहीं बोलती हूँ, तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। और बढ़ेंगे आगे, अगला मैसेज यहाँ पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका, लेकिन अपना नाम पता तो मेंशन करिए आप कौन है और कहाँ से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और यहाँ एक और टाटा जमशेदपुर से मैसेज पहुँचा हुआ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ शुभम निषाद जुड़े हुए हैं बलमपुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है। गाना सुनना चाहते हैं सिर्फ राज की आवाज़ में, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हमारा भी हाजिर लगा दीजिए मैडम जी, हमको भी गाना सुनना है, हमारा भी गाना बजा दीजिए, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है प्ले करेंगे। गोल्डन टेलर जुड़े हुए हैं तीनफड़िया से, बहुत बहुत स्वागत आपका। यहाँ इंद्रदेव जी जुड़ चुके हैं, लिख रहे नमस्कार जी, हमें भी गाना सुनना है, तो आपके गाने की फरमाइश जो है मंगलवार को प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम भी हैं मैम, ठीक है बिल्कुल, मुझे पता है कि आप भी हैं। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है दुबई से, यश चौधरी जी जुड़े हुए हैं और उनका सुनना है गाना दर्द जुदाई के नीलकमल की आवाज़ में। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे नीलकमल की आवाज़ में।

तुम्हारे बारे में अब कोई बात नहीं करते, तुम्हारे बारे में अब कोई बात नहीं करते, तुम्हें सोचकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, पर जरा सा भी भूला नहीं हूं तुम्हें, पर जरा सा भी भूला नहीं हूं तुम्हें, वो अलग बात है कि तुम हमें याद नहीं करते।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869973।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और यहाँ बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश भी है व्हाट्सएप के माध्यम से। ऋषिकेश जी जुड़े हुए हैं विलेज बस्तरा लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से और लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है जल्दी आ जाए ये बलमुआ दिल तो के बुलावा था। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं, इंजॉय करिए अपने गाने को, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 94.4 FM।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
0: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रंजीम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आप आज मेरा भी गाना सुनवा दीजिए। बिल्कुल, आपके भी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रंजीम को। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है भाई, तो थक गया 12 बजे से लेकर अभी तक कॉल करते करते।
0: तो चलिए अभी तो लग गया ना, थकान खत्म हो जाएगी गाना सुन के।
1: पहचान रहे हैं?
0: निसार अहमद बात कर रहे हैं ना?
1: जी जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा नाम लेने का।
0: जी कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
1: गाना हमको सुनना है, फिल्म का नाम है मन की आंखें, पुराना फिल्म है, धर्मेंद्र और रोहिदा रहमान का। गाने का बोल है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है।
0: जी जी,
1: गाना सुनवाना है पहले तो आपको
0: जी,
1: और दिल्ली वाले दिनेश मिश्रा भाई को, और प्रमुख जी को, इरफान भाई दुबई वाले को, और जितने भी रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं उन सभी भाई।
0: चलिए तो प्ले कर दिए गाना आपकी।
1: थैंक यू,
0: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल के,
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी।
2: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-097-06-575।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज है लिखने की, प्लीज मुझे भी ज्वाइन करिए और लिख रहे हैं, हेलो मैम मैं आलिया बोल रही हूँ गोपालगंज से और मुझे भी सॉन्ग सुनना है, घूमे ला जब गड़िया में, गाने की फरमाइश के साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका और फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है, बनी रही है हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि एक ही नज़र में आप हमारे मेहमान बन गए, दो बातें क्या कर ली, सारा जहाँ बन गए, पास रहकर भी लोग हमें अपना बना ना पाए, दूर रहकर भी आप हमारी जान बन गए। और पाजी नाम से सुना ही होगा मैम, जी हाँ बिल्कुल सुने हुए हैं और लिख रहे हैं वैसे मैम आप खुश हो ना, बिल्कुल हाँ मैं बहुत खुश हूँ और ये सवाल क्यों किया है, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश भी हमारे पास पहुंचा हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से ही। और यहाँ अगली गाने की फरमाइश जो है घाम लगता खेसारी लाल की आवाज़ में गाना सुनना चाहते हैं, विकास कुमार जी हैं जुड़े हुए हैं और इनके साथ में हैं इनके दोस्त हैं विजय रंजीत और लंडन रजाक हैं, मुन्ना जी हैं, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और गाने की फरमाइश है तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं घाम लगाता खेसारी लाल की आवाज़ में, इंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं। और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कोई ले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतानी। तो तू इनके लगे काहे ने कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने राजसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
4: कहाँ पर?
3: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
4: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
3: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
4: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, मैसेज लिख रहे हैं कि हेलो मैडम जी नमस्कार, राधे राधे। आज का प्रोग्राम सबसे ज्यादा भोजपुरी सॉन्ग ही बजाए, हिंदी सॉन्ग कम भेजे। सुजीत कुमार जुड़े हुए हैं लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी हाँ, आज के शो में भोजपुरी सॉन्ग ज़्यादा चले हैं, लेकिन सारे गाने एक से बढ़ के एक थे, अच्छे थे। और ऐसे ऐसे अच्छे गाने की फरमाइश किया करिए और भी अच्छा लगेगा। बढ़ेंगे आगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहा है कि मैम आप अपनी ड्यूटी करते हो ना, तो लोगों को भरमा कर बस इसलिए पूछा आपने। ओहो आप खुश हो ना, ओहो चलिए बढ़िया है, पूछे कम से कम कोई तो पूछा कि हम खुश हैं या नहीं। और मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी से, बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़े। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि किच किच लगता है मैम, मुकेश कुमार शाह हैं कला फलता जिला जमुई बिहार से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं अपने गाने की फरमाइश के लिए। और फरमाइश करने वाले हैं एमडी महमूद जी केरला से और इनको सुनना है गाना। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुंच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रमजम 90.4 एफएम को।
1: मैं एमडी महमूद केरला से, आज मुझे भी एक गाना सुनना है। गाने के बोल है, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। और डेडिकेट सबसे पहले आपको और आपकी जितने भी पूरी टीम है रेडियो रिमझिम की सबको, और उन सब के साथ साथ अभिनंदन टेलर लालगंज, उनके भी जितने टीम है सबों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। 3:26 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़े हैं तो काफ़ी सारे मैसेज है। और मनीष पांडे जी हैं, लिख रहे हैं कि हमार गनवा बाजी की ना, तो बिल्कुल बाजी गाना बाजी तब जब की गाना की फरमाइश है। और गाना कौन सा सुनना है जरूर बताइए, हम आपकी भी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बोले हैं और आपने गाने की फरमाइश बताई ही नहीं तो कैसे प्ले करें। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि फीडबैक है, नौशाद जी हैं लालगढ़ से, थैंक यू मैम आपने गाना में शामिल करने के लिए और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं हेलो हाय, और डॉक्टर अमोद कुशवाहा जुड़ चुके हैं जय छपरा कुशनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि वंस अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, आज फरमाइश करने वाले श्रोताओं ने धूम मचा दिया है और चार चांद लगा दिया है योर वॉइस योर चॉइस में। और योर वॉइस योर चॉइस के प्रोग्राम में कुछ लोगों ने दिल को झुमाने पर मजबूर कर दिया तो कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया गीत के साथ में गुनगुनाने के लिए, क्या बात है। आज का प्रोग्राम सुपर से ऊपर चल रहा है और इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए हैं। मिशर महमूद जी की फरमाइश, आपकी भी फरमाइश बहुत ही अच्छी थी, धन्यवाद जी सभी को। और सोनू जी हैं सऊदी अरब से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है कॉल के माध्यम से, और कॉल रिसीव करने से पहले ही कट गया, तो चलिए इंस्टाग्राम की तरफ रुख करते हैं। और यहाँ भी गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, फूल और कांटे फिल्म का गाना है आई लव यू, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं संजीव जी, तो चलिए आपकी फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं जो कि जुड़े हुए हैं झारखंड जमशेदपुर से, तो आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है। एंजॉय करिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो 90.4 FM पे।

0: एडमिशन फ्री
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565965।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा हुआ है मनीष पांडे जी की तरफ से भी, फरमाइश पहुंच चुका है। और यहाँ प्रेम आदेश जुड़ चुका है पड़ाना कुशनगर उत्तर प्रदेश से, लिख रहे सोनी जी नमस्कार, कैसी है हमारा भी आज लगा दीजिए। बिल्कुल मैं बढ़िया हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि क्या गाना है मैम, और पास ही है यूपी से। और यहाँ अगली फरमाइश पहुँच चुकी है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बिना देरी किए बात करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश पहुँची है हमारे पास। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। जी नमस्कार, जी क्या हाल चाल है?
1: ठीक है मैम, आपने सुनाइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
1: राम जाने। जी
0: राम जाने
1: जी।
0: और सुनवाना भी है?
1: जितने स्वास्थ्य कर्मी लगे हैं पंचायत।
0: चलिए तो गाना प्ले कर दिए आपकी।
1: ठीक है
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल किए।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
2: ठक ठक
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है, लिख रहे हैं कोई भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। और लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग और प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया चल रहा है सोनी मैडम जी। और मैसेज करने वाले हैं गुरु नानकपुरा बटिया पंजाब से किशोर साबलिनिया जी, साथ में इनकी है सावित्री साबलिनिया, सुमन साबलिनिया बेटी अंशु के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शो में। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं नमस्कार जी आप सभी को, सबसे पहले मैं तो माफ़ी चाहता हूँ बार बार फीडबैक भेजने के लिए, क्या करें आज के श्रोताओं ने मजबूर कर दिया है, राम जाने की फरमाइश करने वाले भाई को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनू जी हैं सऊदी अरब से, और कोई बात नहीं बार बार फीडबैक भेजने से कोई दिक्कत नहीं है, और बीच में व्हाट्सएप कॉल आने से परेशानी होती है, बाकी फीडबैक और मैसेज से कोई परेशानी नहीं है, आप कर सकते हैं, यहाँ पूरी आज़ादी है आपको मैसेज करने की। और यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है, मनीष पांडे जुड़े हुए हैं और इनको सुनना है गाना ये हम कहाँ आ गए हैं। तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश प्ले कर दिए हैं, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे एंजॉय करिए अपने गाने को।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388 9470 या 9198 8889 673।

104 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ समय इशारा कर रहे हैं कि शो से समाप्ति होने का समय हो रहा है और विदा लेने का समय हो रहा है, और 10 मिनट है हम सभी के पास, आप सभी के साथ हूँ। और यहाँ अभी अभी मैसेज पहुँच रहे हैं फरमाइशों के साथ, और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जिम्मेदारियाँ का बोझ उठाते उठाते मेहमान बन गए हम अपने ही घर में, जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते मेहमान बन गए हम अपने ही घर में, आते आते पता नहीं ये जिम्मेदारियाँ हमें कहाँ लेकर आएगी, अपने बेगाने हो गए पैसा कमाते कमाते। और मैसेज करने वाले हैं शारदा अंसारी जी, जयपुर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शो में, बने रही हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं सोनी मैम अगर समय मिले तो ज़रूर सुनाइएगा। जी हाँ बिल्कुल, और कोशिश रहेगी। लिख रहे हैं कि सोनी मैम प्रणाम, हम भी जुड़ गए हैं रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम से, हमको भी गाना सुनना है। और गाने का बोल है कि दिल देता नहीं लेला दिलदार सवरिया हो। और गाने की फरमाइश करने वाले हैं दिनेश विश्वकर्मा जी, जो कि जुड़े हुए हैं फिलहाल मुंबई से, न्यू मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शो में, और फरमाइश है तो प्ले करने की कोशिश है। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय मैम मेरा गाना नहीं बजा, और बिल्कुल आपका भी गाना प्ले करने वाले हैं। अलीशा जी हैं थावे से, और इनको सुनना है गाना घूमेला जब गड़िया से, तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है प्ले कर रहे हैं। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि प्लीज़ मैम मेरा भी गाना बजा दीजिए, तो बिल्कुल पूरी कोशिश है कि हम आपके गाने की जो फरमाइश है प्ले करें। और यहाँ एक और मैसेज है, सोनू जी हैं लिख रहे हैं कि धन्यवाद मैम, थैंक यू। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं सोनी मैम रेडियो रिमझिम में धनेश कुमार मिश्रा के नाम से कोई दूसरा भी है क्या बताइएगा। जी नहीं, धनेश कुमार मिश्रा के नाम से इकलौते आप ही हैं जो कि हैं, बाकी और कोई नहीं है। हाँ सोनू जी के नाम से, सोनू के नाम से तीन लोग हैं जो कि रेडियो रिमझिम में है, लेकिन आपके नाम से आप इकलौते हैं रेडियो रिमझिम में। और आज की अगली फरमाइश प्ले करने जा रहे हैं, हमारे पास पहुंचा हुआ है थावे से अलीशा जी का, और गाना है घुमेला गड़िया में। तो चलिए आपके गाने की जो फरमाइश है प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करिए अपने गाने को करीना पांडे की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ दिनेश मिश्रा लिख रहे हैं कि शामरी सुरतिया पे राजा हम लुभा गए नहीं, और ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। बजाने वाले भाई को दिल से धन्यवाद देते हैं और सोनी मैम आपको भी बाय बाय बोल रहे हैं, फिर मिलेंगे। जी हाँ फिर मिलेंगे। दिनेश मिश्रा है दिल्ली से और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि अपनों के बीच रहकर रेडियो रिमझिम का ये प्रोग्राम सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं तो हम लोग जहाँ पर हैं यहाँ पर भी अपनापन तो लगता है, लेकिन जब गांव की यादों की बरसात आती है तो दिल मजबूर हो जाता है। और यह बात वही लोग समझ सकते हैं जो अपने गांव से अपने घर से अपने गलियों से दूर है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है आपके। और सुनो जी हैं सऊदी अरब से और बढ़ेंगे आगे। यहाँ एक और मैसेज है और लिख रहे हैं कि 5 मिनट बचा है बस और हम भी जुड़ चुके हैं आज फाइनली शो में जुड़ गए हैं लास्ट में ही, और बहुत मिस किए आज रेडियो रिमझिम को। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से, लिख रहे हैं नमस्ते सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी और बने रहिए हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ एक और फरमाइश है, लिख रहे हैं कि मेरा भी फरमाइश प्ले कर दीजिए। और तौसीफ जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और गाने की फरमाइश है। तो अब तो समय नहीं बचा है और अगली फरमाइश जो है मैं कॉल के माध्यम से लेने जा रही हूँ। कल जुड़िएगा शो में, पूरी कोशिश रहेगी कि कल हम आपकी गाने की जो फरमाइश है प्ले करें। और यहाँ बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ कॉल के माध्यम से। चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से। हेलो
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में जी। गाना तो सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
1: कुमारी गोपालगढ़ से।
0: नाम एक बार और बताइए।
1: कुमारी।
0: खुशी कुमारी। जी और गोपालगंज में कहाँ से बात कर रही हैं खुशी जी।
1: इधर हाजीपुर से इधर।
0: अच्छा तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको।
1: गाना सुना है जो गाना नहीं है बिना बोले वही गाना सुनना है
0: और सुनवाना भी है।
1: सबसे पहले आपको जो रेडियो सुन रहे हैं सभी लोगों को।
0: ओके चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
1: थैंक यू मैम।
0: ओके बहुत बहुत धन्यवाद आपका सो में कॉल की जी। नब्बे दशमलव चार रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ शुभम निशा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जिनकी भी फरमाइशें आज पूरा नहीं हो पाई है वो लोग फिर से कल जुड़िएगा इसी शो में 12 से 4 के बीच में अपने गाने की फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपनी फरमाइशों के साथ। कल पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी गाने की जो फरमाइश है प्ले करें। और अभी खुशी जी जुड़ी हुई थी गोपालगंज हजियापुर से और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश है बिना बुलावले गौरा नहीं यार मत जाइए। तो चलिए इंजॉय करते हैं हम सभी खुशी जी की फरमाइश पे ये भोजपुरी गाना कल्पना पोडवारी की आवाज़ में। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को और फिर मिलेंगे कल इसी शो में। तब तक के लिए दीजिए जाने की इजाज़त, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। मिलते हैं, नमस्कार।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देख रेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
3: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
2: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
3: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
10: All right.

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7555467666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 7070756300 या 7070752400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7555467666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
10: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
8: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
10: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026-27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
9: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
10: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
9: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा, 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता, हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।
11: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री,
9: कहाँ पर?
11: अरे सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
9: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
11: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
9: तो देर ना करें, ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
12: तू जो है, आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
9: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
8: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
10: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
8: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
8: और 90-97-61-60-02।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क 99-393-65-930।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं, और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं, और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्ते लागू।
8: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: रामू हरिया, कल तैयार रहिया लो, पराली जलाए चले के बा।
5: ठीक बा भैया।
6: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
7: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
6: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
7: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
6: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
7: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा करी भाई जानकारी देके।
6: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
10: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
11: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
10: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
11: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
10: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779714864।
12: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
13: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
12: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
14: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
15: अरे अरे कहाँ से आवतारू हो, दागी कोई सर बात। अरे अरे धरो सर, धर धर।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है, और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा, और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हों सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
2: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
1: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
2: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
7: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत।

0: तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाई।
1: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87 894 18 744।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज,
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ।
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-300-99-66-999।
3: Now pick your phone up.
4: बात, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: दीदी नमस्ते।
6: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: मैं सविता बोल रही हूँ दिल्ली से।
6: जी कैसी हैं सविता जी?
5: ठीक हूँ।
6: तो क्या हो रहा था अभी?
5: अभी काम धंधा करके बैठी हूँ, क्या होगा।
6: तो बता दीजिए गाना कौन सा सुनना है आपको?
5: रोटी रोटी बेलाई के परी।
6: और सुनवाना भी है?
5: सुनवाना भी है। हाँ, धनेश कुमार मिश्रा।
6: जी जी, चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइक है इसमें कॉल। Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
0: जी। बहना जी प्रणाम, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, मैं राजीव यादव, ग्राम प्रेखा श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्कर हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, और 2 महीने बाद हो सका है शामिल हो रहा हूँ
1: जी। तो क्या हाल चाल है?
0: हाँ बहना जी, तबीयत खराब हो गई थी तो थोड़ा व्यस्त रहे, अभी एकदम ठीक ठाक है। घर में मम्मी पत्नी बच्चे सब कुशल मंगल में है।
1: चलिए बढ़िया बात है। तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
0: गाना सुनेंगे उज्जैन के आगे जी, उज्जैन के पीछे जी, उज्जैन के आगे पीछे जी जी, मैं उनकी साली हूँ कसम से जी जा जी।
1: और सुनाना भी है?
0: हाँ बहना जी, हमारे मित्र हैं शारदा प्रसाद जी, मथुरा वृंदावन से हैं, राम शर्मा जी हैं, श्री यादव जी हैं, उदय भानपाल जी हैं, अनूप कुमार राजपूत जी हैं, बलवान सिंह यादव हैं, पालन यादव हैं, और रेडियो झिमझिम की प्यारी बहना आपको इसी गीत में शामिल कर रहे हैं।
1: गाना आती
0: कुछ लाइनें कह रहे बहन, इजाजत हो तो। हर पर्वत को झुका नहीं सके, हर दरिया को सुखा नहीं सकते, आप हमें भूल जाएं भले ही, लेकिन हम रेडियो झिमझिम को भुला नहीं
1: लेकर।
0: जी बहना जी, काम नमस्कार।

0: रामू हरिया कल तैयार रहिए लो परारी जलाए चले के बा।
1: ठीक बा भैया।
2: ए भैया एगो सूचना सुनला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, न तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
3: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
2: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
3: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
2: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
3: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
2: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना हा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल

0: गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में। HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में। ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में। एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
2: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
3: कहाँ पर?
2: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
3: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
2: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
3: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565695।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7555467666।
9: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
10: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा मिला ही नहीं।
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
13: Now pick your phone up.
14: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 104.4 FM में।
16: थैंक यू मैम, मैं अहमद अली, सरियावाद नंबर 1। कैसी है मैम?
15: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
16: हम लोग भी अच्छे हैं, तबीयत अच्छा है ना?
15: जी हाँ बिल्कुल बढ़िया है।
16: अभी तो गर्मी बढ़ रही है यार,
15: फिर भी ठीक ही है मौसम आज।
16: हवा चल रही है?
15: हवा ठंडा ही चल रहा है, गर्म हवा नहीं है।
16: और बताएं, नाश्ता पानी हुआ है क्या मैम?
15: जी हाँ बिल्कुल हो गया है, अभी तक बाकी थोड़ी रहेगा।
16: चलिए आज मेरे को सॉन्ग सुनाइए सूर्या मूवी से, प्यार का है बनाया राम ने, कोई आए मेरा दिल सामने।
15: सुनाना भी है?
16: हाँ सुनाना है। सबसे पहले तो आपको, अटारी को, कमरांदा सिट को, राघव जी को, दिलीप भाई को, और जो भी रेडियो रिमझिम यहाँ से भी सुन रहे हैं।
15: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
16: थैंक यू मैम, सलाम अलैकुम,
15: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल की।

0: गुड मॉर्निंग दीदी।
1: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: क्या हाल है?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: आप भूल गए?
1: बिल्कुल नहीं भूले हैं, भूले होते तो नाम पूछते नहीं।
0: नहीं, मेरे दिन साहब तो भूल गए हैं।
1: ना ना, बिल्कुल नहीं भूले हैं। आप नहीं आ रहे हैं शो में?
0: क्यों, मैं अभी टाइम नहीं मिले थे। जानते हैं कि शादी ब्याह में थोड़ा फंक्शन हो जाता है, इधर जाइए उधर आइए।
1: समझ रहे हैं,
0: अभी तो टाइम नहीं है, अपन जा रहे हैं पूजा करने। आज दूसरा कॉल में मेरा लग गया, एक बार दूसरा कॉल में लग गया।
1: चलिए बढ़िया है, मन से किए इसलिए लग गया।
0: आप नहीं आए शादी में, ये बात
1: नहीं आ पाए, मौसम भी देखे आप कैसे हो गया था।
0: चलिए, मेरे बहुत भगवान के तरफ।
1: जी जी, अभी तो जिसका शादी है उसका हाथ कलेजा पे ही है कि कब क्या हो जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए। तो बता दीजिए गाना कौन सा सुनना है आपको?
0: कोई भी बता दीजिए, मंदिर का कोई भी बता दीजिए।
1: नहीं नहीं, आप ही बताइए।
0: कोई भी बता दीजिए,
1: तो भी कुछ तो बताइए, हिंदी भोजपुरी किसके आवाज में? कोई भी
0: है। आप सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है?
1: अरे वैसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि सर के तरफ से अलाउ नहीं है, उनके तरफ से है कि गाना अगर कॉल आया तो गाना बताना ही है, नहीं तो फिर आप गाना नहीं बजाइए। हिंदी? चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी बिल्कुल, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किए।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।

0: एसपी त्यागी जी से मिलने का पता।
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 90971602।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क 99393-65930।
11: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
12: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
13: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
14: बात, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो सोनी मैम, प्रणाम।
16: प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
15: और
16: सब बढ़िया, आप बताइए।
15: एक बिहार के नेटवर्क ना सुधरी क्या?
16: आप बताइए, बिहार के नेटवर्क सुधरी कि ना सुधरी, अब हम कैसे बताएं?
15: बिजली बताओ, फ्यूचर बताओ,
16: रिकॉर्डिंग कहीं नहीं पर कॉल आवा था से बिजली बताओ थे।
15: ना ना, तो बिजली तो बताओ, फिर स्विच ऑफ बताओ था।
16: स्विच ऑफ कहे बताओ, तो इतना नहीं है पता हमारा।
15: बिहार ना सुधरी
16: ऐसा ना कहीं। तो गाना कौन सुनने के बाद बता दी?
15: भोजपुरी सुनने के बाद ऐसे बबीता सागर के पूर्वी बजा दे, चूल्हा लगे जरी,
16: और सुनवाई के भी बात।
15: वे जितना लिसनर लोग सुनो तलो सुनी लो, खास करके रामा जी प्रसाद वाला सुन लिया, ये भैया भाभी बोल रही बोलो।
16: रवि के फोन अभी ना आई बा,
15: बिजी बा,
16: चली तक कबले जाए के बा गाँव से उनका
15: कोई पता ना,
16: अभी पता ना। चली ठीक बा, कहीं जास तो फिर वही जैसे जुड़ा घर पे तो टाइम मिलत ना।
15: तो बजा दे,
16: जी जी बिल्कुल। हेलो माय चॉइस में तो कोशिश करें नहीं कि हम गाना

0: काटी।
1: जैसे ना चार पाँच मिनट के तो ऑर्डर चार पाँच मिनट के बना, ये सब थोड़ा लाइव शो होता है, बड़ा बड़ा होला
0: तो बड़ा बड़ा होला तो शुरू वाला जो बतिया रहा वो काट देवे नहीं, गानवा तो रहे करे ला।
1: ये सब बाकी कोनो बेकार नहीं छे, बढ़िया बा, तनी लंबा होला गाना लेकिन बढ़िया है। चलिए ठीक ठीक बा,
0: बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल के नी।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-651 या 97-0976-575।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
9: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हैं सही से ही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
1: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
2: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराश जाता है।
2: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
1: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
10: बात, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, कौन सा
12: जी? बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 94.4 FM में।
11: नमस्ते मैम।
12: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
11: साइन फिरदौस माधव।
12: नाम एक बार और बताइए।
11: साइन फिरदौस।
12: साइन फिरदौस जी, और कहाँ से बात कर रही हैं साइन?
11: माधव
12: जी। और क्या करती हैं आप?
11: अभी तो आपका कॉल लगा रही
12: हूँ। तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
11: सुना दीजिएगा, मुबारक मुबारक ये शादी तुम्हारी।
12: मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी
11: जी।
12: सुनवाना भी है?
11: सभी दोस्तों को मुबारक को भी डेडिकेट करना चाहते हैं।
12: ओके चलिए, तो प्ले करें गाना आपके।
11: थैंक यू मैम।
12: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो मैं कॉल।
11: बाय
12: बाय।

0: दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार

0: गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: श्रोता लोगिन नमस्कार, रवा सभी सुनत बानी आपन बोली के पहचान यानी कि रेडियो रिमझिम 90.4 FM और ये हम राउर दोस्त आज फिर से रेडियो रिमझिम पर हाजिर हो गल बानी लेके अपना माटी के सुगंध से सरोबोर कार्यक्रम भोजपुरी बिरहा। तो चलिए आज के कार्यक्रम के हमने क्या आगाज कर जाओ और सुनल जाओ ये बिरहा।

बाबूजी, रउआ सब जोन हमार कांड पसंद करीला, एक खातिर हम ओम प्रकाश सिंह यादव एंड पूरी पार्टी रउआ सब की बहुत बहुत आभारी बानी हम। हर कंपनी में रउआ सब जैसन कि हम आप लोगन के बीच में मार्केट में भेजी ला और के रउआ सब पसंद करीला, एक और कैसे था आप लोग के बीच में हम भेजत बानी। अगर शांति से दिमाग से अगर ये गाना को सुनब आप लोग मिजाज बना के, तो हमके आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा कि कैसे हुआ सबके जरूर पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद बा हमरे तरफ से, आप लोग के प्रणाम बा, नमस्कार बा। भोजपुरिया में हम रुआ सबके गोड़ लगता नहीं कि हमार रुआ सब ई कांड पसंद करी ला, वही तरीका के गोर हम कांड भेजता नहीं। लेकिन ध्यान देव सभी की कांड कहाँ का बा, केकर बा, कैसन बा। चार लाइन भूमिका का लाइन में कवि जी लिखलन हम, कसक रह गई रात रोती रही, गम के आलम में जबकि डूबा सार था, प्यार पावस के आंगन में सावन सिसकता, जबकि तरणी तड़पती न पतवार था, खाक में सारी हसरत मिला दी गई, जुर्म हंसता रहा ना कोई यार था।

एक लाइन गजल का नमूना बा। का गजल का लाइन बा मास्टर? क्या बात है, यह तरज हो कि अरे पिया जिसको बा।

हमरे विरहा के शुरुआत बा कहानी कैसन बा केकर बा कहवा के बा एकदम शीशा जैसन कहानी झलके लगी। केकर कहानी बा बाबू कहवा के बा मगर गाना का भाव लिखल गई। का लिखल गई कि अरे भला जो अबू भला जो किया।

आज कई है जमाना बा कि जे अपना दुख से दुखित नहीं के दूसरा के सुख दे के बड़ी दुखित बा। फलाना कैसे उजर कपड़ा पहनले बाड़न, उनका खेत में खूब सुगर धान लागल बा, तो उस समय से ओके रोपनी कैलन, समय से खाद दिहलन, समय से पानी दिहलन, तो उनका अच्छा खेत में धान फसल उपजल बा। अब बगल वाला खेत के मालिक दिन भर बैठ के ताश खिले बाड़न, लेकिन सोचे थे उन कि अरे फलानवा के साला खेत में बड़ा सुंदर धान लागल बा, कुछ ना करब तो राति कन साण से चरवाई। यह जमाना बा जे अपना दुख से दुखित नहीं के दूसरा के सुख देख के बड़ी दुखित बा। लेकिन बाबूजी कहानी कहवा कबा नजम के लाइन में बतावल गिलता।

0: तनी बात समझ ला। बिजनौर जिला में गांव का नाम गोसलपुर। दो भाई का कहानी बा। बड़का भैया का नाम रमेश बा, छोटका भैया का नाम राजू बा। बचपने में माई बाबू मर गईलन, दर्द याद गांव को लोग मिल के दोनों लड़कन के पाल पोस के जवान कह दिहलन।
1: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
6: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये दो फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हो सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
7: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
7: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिकल जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
11: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
12: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
7: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
0: रमेश के या राजू के, धीरे धीरे जब रमेश और राजू, रमेश बड़का भैया रहलन, जब धीरे धीरे जवान भइलन, तब गांव घर के लोग सोचलन कि दो भाई हुवन, ई गांव का हुवन, गांव घर मिल के बड़का भैया रमेश के शादी भी करा दिहलन। बड़ा सुंदर दुल्हन मिलल बे, जेवना दुल्हन का नाम बा प्रिया। वही प्रिया दुल्हन के साथ अपन रमेश जिंदगी के बितावत हुन छोट भाई राजू के लेके 10 वर्ष का दिन बीत गई, लेकिन आज प्रिया के गोद में एको फूल ना खिलल। बड़ा दोनों व्यक्ति चिंतित रहत हुन कि 10 वर्ष शादी भइले भइल, हमनी के गोदी में एको फूल ना खिलल, लेकिन देखें भगवान का माया, कुदरत का देन, आखिरकार भगवान रमेश के सुनलन हा, आ रमेश के गोदी में एगो फूल खिलल, मतलब कि रमेश के एगो बेटा भइल। राजू भी बड़ा खुश बा कि कम से कम हमके चाचा कहे वाला ता एगो भतीजा घर में आइल। जब लड़का भइल बा रमेश के, ओ समय पूरा घर के लोग दर्द याद मिल के ओ लड़का का गोदी में ले के लोग खुशी मनावत हुन, बधाई गावत हुन, सोहर गावत हुन। कवि जी एक बात लिखलन है, का तरज कलाइन बा मास्टर। वह तरज कलाइन बा कि चले लूटा

पूरा बाबूजी खुशी मनावल जात बा। गांव घर के लोग भी मंगल गीत गावत होन कि चला कम से कम रमेश के 10 वर्ष के बाद एगो बेटा भइल। ए गरीब आदमी के परिवार कम से कम तो जी जाई, परिवार के एगो उत्तराधिकारी तो हो गई लड़का। सब लोग खुशी मनावत होन, लेकिन भगवान का माया देखें, खुशी हमर मनावल जात बा। यही बीच में एगो दर्दनाक घटना घटल बटे। और दर्दनाक घटना का घटल बाबूजी, जौन रमेश के छोट भाई राजू बाणन, राजू घर में जब सब कोई खा पी लिहल, राजू जाके अपने घर में सुतलन हा, और सुतलन बस वही घर में राजू के सर्प काट दिया। आ जब सर्प काट दिया, हलचल मच गया चारों तरफ, गांव में हल्ला मच गई कि अरे बाप रे बाप, राजू के सगुन में अशगुन हो गई कि आज राजू के सांप काट दिहलस। गांव घर के लोग दोबारा फिर ओ रमेश के घरे जुट गईलन, झाड़ फूक शुरू होके लागल, दावा दारू शुरू भइल। लेकिन ओ समय अंतिम घड़ी में देखें राजू रोए लगल रमेश भैया के देख के, आ रमेश भैया के रो के देख के एक ठी बात कहलन हा। का कहलन बाबू जी? ये रो के कहलन हा कि आई हो भैया, अरे आई हो भैया।

0: आखिरकार लाख कोशिश किया गया बाबू, लेकिन राजू को कोई बचा।
1: लोक मोर्चा से एक एक सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। और ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सैन्य बलों के शौर्य को किया नमन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मनोनीत मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा कोटे से 15, जदयू से 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 तथा हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक सदस्य ने मंत्री की शपथ ली। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पटना में गांधी मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में मंत्रियों ने पहले 5-5 और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। जदयू से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, रत्नेश सदा, जमा खान, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर राउत और शीला मंडल ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं जदयू से नए चेहरे के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल और श्वेता गुप्ता को पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। भाजपा से शपथ लेने वालों में विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, लखेंद्र पासवान, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, केदार प्रसाद गुप्ता और श्रेयसी सिंह शामिल हैं। भाजपा से नए चेहरों के रूप में नंद किशोर राम, मिथिलेश तिवारी, कुमार शैलेंद्र और रामचंद्र प्रसाद मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से संजय पासवान और संजय सिंह, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने वालों में 28 विधायक और 4 विधान पार्षद हैं। वहीं 2 मंत्री निशांत कुमार और दीपक प्रकाश अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। गौरतलब है कि राज्य में 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ था। इस दिन जदयू से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिन्हें उप मुख्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया गया था। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी निषाद मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। समारोह में भारी संख्या में एनडीए गठबंधन दलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। महिलाओं की अच्छी खासी उपस्थिति देखी गई। सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में 5 महिला मंत्रियों को जगह दी गई है। इनमें भाजपा से जमुई विधायक श्रेयसी सिंह, मुजफ्फरपुर के औराई से विधायक रमा निषाद शामिल हैं। वहीं जदयू कोटे से पूर्णिया के धमदाहा से विधायक लेसी सिंह, मधुबनी के फुलपड़ा से विधायक शीला कुमारी और शिवहर विधायक श्वेता गुप्ता को कैबिनेट में जगह मिली है। कैबिनेट में शामिल किए जाने पर मंत्री श्रेयसी सिंह ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया।
3: खुशी भी है और जिम्मेदारी का एहसास भी है कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने पुनः ये भरोसा जताया है। मैं यही वादा करती हूँ कि पिछली बार की तरह इस बार भी पूरी ईमानदारी के साथ बिहार की जनता के लिए काम करके दिखाएंगे और साथ ही साथ महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए काम करेंगे।
1: जदयू कोटे से मंत्री बनी लेसी सिंह ने कहा कि नई सरकार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेगी।
4: हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा मुझे फिर से जिम्मेदारी सरकार में मंत्री बनने का अवसर दिया गया है। बखूबी जो उन्होंने भरोसा जताया है, उस भरोसे पर कायम रहेंगे और हम वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में काम करेंगे।
1: पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल की गई जदयू की श्वेता गुप्ता ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसका वे पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह करेंगे।
5: पार्टी के लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पहली बार में उन्होंने मुझ पर इतना जो है विश्वास दिखाया। पूरी एनडीए के लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, सिवर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं सबको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि जो कार्य मुझे सौंपा जाएगा मैं उसे पूरे लगन से करूंगी।
1: मंत्रिमंडल में शामिल शीला कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वे बिहार के विकास के लिए काम करेंगे।
6: आदरणीय नेता हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम हृदय से बहुत बहुत आभार देते हैं। एनडीए का गठबंधन की सरकार पहले भी रहा है और हम लोग उसमें भी बहुत अच्छे से काम किए, आगे भी हमको विश्वास है कि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे, मिलजुल करके सब काम करेंगे।
1: भाजपा कोटे से मंत्री बनी रमा निषाद ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकार की योजनाओं को पूरी तरह से आम लोगों तक पहुंचाने की रहेगी।
7: हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम पर विश्वास भरोसा जताए, हमारे यह की मुख्यमंत्री समाज चौधरी जी हम पर विश्वास जताए और जनता की भरोसे में मैं काम करूंगी और पूरी सेवा करूंगी। इसमें प्राथमिकता रहेगी सभी जो है सरकार की योजनाएं और जो काम नहीं हुए हैं वो सारे कामों को जनता तक पहुँचाना।
1: मंत्रिमंडल में शामिल भाजपा के दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य में विकास के साथ कानून का राज बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है।
8: बिहार में कानून का राज, बिहार के युवाओं को रोजगार, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट विकास, विकसित बिहार के सपना को पूरा करना हमारा लक्ष्य है और जिस तरह से सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार काम कर रहा है मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जितने विपक्ष के लोग गाल बजाते थे अब उनको गाल बजाने का भी उपाय नहीं मिलेगा।
1: कैबिनेट में शामिल अल्पसंख्यक समुदाय के एकमात्र मंत्री जमा खान ने जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया।
9: नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने भरोसा जताया। निश्चित तौर पिछले दिनों में मैंने काम किया था, आज भी जो जिम्मेदारी मिली है बखूबी बिहार में निभाने का काम करूंगा।
1: जदयू के श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और भ्रष्टाचार तथा अपराध पर अंकुश लगाना सरकार की प्राथमिकता है।
10: नौजवानों के लिए रोजगार, नौजवानों के लिए नौकरी, अपराधियों को दंडित करना है, अब बिहार से अपराधी को भगाना।
1: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने कहा कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए वे मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी।
11: सब जनता का प्रेम विश्वास है, उन्होंने लाया है मुझे राजनीति में, मेरे कार्यकर्ताओं ने लाया है मुझे। तुम जो भी विश्वास किया है जनता ने और कार्यकर्ताओं ने मुझ पर, ये जो दायित्व दिया है मैं उसे सच्चाई से ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा।
1: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दीपक प्रकाश ने मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर एनडीए नेतृत्व के प्रति आभार जताया।
12: जवाबदेही मिली है इसके लिए सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री देश के, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गठबंधन के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, आप सबों का धन्यवाद करते हैं आशीर्वाद देने के लिए और विश्वास जताने के लिए। पहले जवाबदेही मिली थी तो लोगों के लिए काम किया था, आने वाले समय में भी बिहार की जनता के लिए काम करेंगे।
1: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सभी नवनियुक्त मंत्रियों को शुभकामना देते हुए कहा कि अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल होने वाला है।
13: युवा जोश सम्राट जी के नेतृत्व वाली ये सरकार जिसमें एक खूबसूरत मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ जिसमें हर क्षेत्र हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया और मैं मानता हूँ कि ये सरकार अगले 5 साल बिहार को तीव्र गति से विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगी।
1: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मंत्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिहार के विकास के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों को शुभकामना देते हुए उम्मीद जताई कि नई सरकार में बिहार नई ऊंचाइयों को छुएगा।
14: जो लोग मंत्री बने हैं सब लोगों को मेरी पूरी शुभकामना है। बिहार की सरकार मजबूती से विकास का काम पहले से कर रही है, अब सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में फिर से बिहार का विकास आगे करती रहेगी।
1: बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार ने उम्मीद जताई कि राज्य मंत्रिमंडल आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल होगी।
15: सभी मंत्रीगण अपने अपने विभाग का अच्छे से निर्वहन करेंगे और जनता के जो वाजिब तरीका है विकास कैसे होगा उस पर अपना अमल काम करते रहेंगे। सम्राट जी नीतीश जी के मार्गदर्शन में ही एनडीए की सरकार चल रही है और चलेगी। सुशासन का जो मूल मंत्र नीतीश कुमार जी ने दिया था उस पर अच्छे ढंग से काम सरकार करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना हवाई अड्डे से शपथ ग्रहण समारोह स्थल गांधी मैदान तक रोड शो किया। इस दौरान सड़क के किनारे उत्साहित लोगों की भीड़ ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। श्री मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से अलग अलग जगहों पर पारंपरिक नृत्य और गीतों की प्रस्तुति दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे हो गए हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई के रूप में याद किए जाने वाले इस अभियान ने देश की सुरक्षा नीति और सैन्य रणनीति को एक नई दिशा दी थी। एक रिपोर्ट।
16: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
17: भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। यह अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है।
16: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सैन्य बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने भी भारतीय सैन्य बलों के शौर्य को नमन किया है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल की शुरुआत की। इस अवसर पर पटना के बिहटा स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 40 साल और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करवा सकते हैं। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मति को लेकर आज पटना में पथ निर्माण विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में IIT पटना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम के साथ साथ जाने माने पुल तकनीकी विशेषज्ञ आलोक भौमिक मौजूद रहे। सहरसा जिले के महिषी प्रखंड के बलुआहा मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने से लगभग 300 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सभी बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों कया, चमोली, जहानाबाद, नवादा, खगड़िया और भागलपुर समेत कई जिलों में आज तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना जिले में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ बारिश हुई। पूर्वी चंपारण के तेतरिया में सबसे अधिक 59.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया कि कल राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। 32 मंत्रियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। भाजपा से 15, जदयू से 13, लोजपा रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। और ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सैन्य बलों के शौर्य को किया नमन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: राजू इस दुनिया को छोड़कर चल बसा, रोता हुआ बड़ा भाई रमेश अपने भाई राजू की अर्थी को सजाया है, गांव घर की मदद लेकर के अपने भाई का अंतिम दाह संस्कार कर दिया। घरे ऐलन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना बीतल बा। आज जब 4 महीना बीतल, आज सोचे पर मजबूर हमन रमेश कि बचपन में माई बाबू साथ छोड़ दिहलन, जवान भैली अपने पैर पर खड़ा भैली तो छोट भाई भी साथ छोड़ के चल दिहलन। अब तो एगो मेहरारू एगो लड़का, यही लोग हमके परवरिश करे के बा। घर पर भी 2-4 बीघा 10 बीघा माई बाबू का जगह जमीन ना रहल, क्योंकि खेती गृहस्थी कई के रमेश भाई अपन परवस्ती कर सकें। पूजे पाठ कई के जात का ब्राह्मण रहलन, पूजा पाठ कई के जिंदगी का गुजर बसर करत रहलन। सोच गिलन कि ये गांव में हम कितना कमाई। उनकर एगो दोस्त रहे कहलस कि भैया तू रमेश चल आवा कलकत्ता, अरे वो जो पूजे पाठ करत अड़ा कलकत्ता में आवा पूजा पाठ करब, ई बड़ नगरी बा महानगर बा, एकरा में तोहके पैसा मिली अपन परिवार के परवरिश तू कर पैब कर लेबा ठीक से। ओ साथी के कहला से आज गांव घर के छोड़ के आ रमेश चले लगलन कलकत्ता के तैयारी कैलन। लेकिन जब कलकत्ता के तैयारी कैलन ओ समय रमेश के मरल भाई छोट राजू आज याद आवत बा। आ राजू जब याद आवत बा तो रोत हुअन रमेश आपन मेहरारू लड़का लेके कलकत्ता के तैयारी कैले हुअन जात हुअन। ओ समय कवि जी बात लिखलन हका लिखलन

0: हवड़ा स्टेशन पर रमेश अपने मेहरारू और छोट 5 बरिस के लड़का के लेके उतरलन हा। बड़ी जोर से प्यास लगल बा। दुल्हीन के बैठा दिलन वही हवड़ा प्लेटफार्म पर आ कहलन कि ए प्रिया तू यही प्लेटफार्म पर बैठा तनी हम जा कहू बगल में टंकी बा वही टंकी पर से पानी लेते हैं। बड़ी जोर के प्यास लगल बा लड़का के 5 बरिस के लेके आ रमेश के दुल्हीन प्रिया बैठल बाड़ी। अपन बेग वो जौन सर समान बा मोटरी गठरी अपन सहेजे लगली प्रिया रमेश के दुल्हीन 5 बरिस के छोट लड़का के औकाते का बा। लड़का पर ध्यान लड़का से हट गई अपने सामान के उ सहेजे लगली। यही में लड़का खेलत खेलत 10 मिनट बीतल कुछ दूर आगे बढ़ गई। हवड़ा बाबू आप लोग गई होकबा देखले होकबा हवड़ा नीचे जमीन के नीचे जौन बा स्टेशन बा वही जमीन के नीचे बैठल हई अंडरग्राउंड में गई बड़ा पानी ले आवे प्लेटफार्म पर लड़का वही भीड़ भाड़ में तना भीड़ बा लड़का भग गई पानी लेके अलन लड़का पर ध्यान गई दोनों परानी के लड़का है ये ना लाख खोजलम लेकिन उ लड़का रंजीत जेना लड़का का नाम रंजीत बतावल गई उ रंजीत लड़का ना मिलल।
1: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा साफ सुथरा माहौल एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य तो गोपालगंज में एक ही नाम
2: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल क्लास 10th तक सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
1: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी स्मार्ट क्लासेस मॉडर्न फैसिलिटीज कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
2: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा
1: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध साथ ही सैनिक स्कूल नवोदय नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता हरखुआ भगवान नगर वार्ड नंबर 24 विष्णु शुगर मिल के पश्चिम गोपालगंज।
2: संपर्क करें 800-222-1969 या 9117018350। घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
2: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS नेबोश और IOSH डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स
2: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की आज ही संपर्क करें
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
2: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास जादवपुर में। कई संतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
4: ध्यान दे स्त्री रोग बांझपन ल्यूकोरिया दिमाग की कमजोरी याददाश्त की कमी पेट रोग गैस्ट्रिक लीवर में सूजन बवासीर कान रोग पुराना बुखार नस रोग किडनी की पथरी पीत की थैली में पथरी पेशाब की थैली में पथरी गठिया पुराना जोड़ों का दर्द साइटिका चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी जादवपुर मेन रोड गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे हर शुक्रवार को है फ्री OPD तो देर किस बात की आज ही संपर्क करें।
2: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: दो दिन, चार दिन, पाँच दिन, दस दिन हुई कलकत्ता में रह के रोवत हुन, गावत हुन, चारू और खोजत हुन, लेकिन पाँच बरिस के रंजीत मिलल ना बाबू। आखिरकार माई बाबू रमेश आ रमेश का पत्नी प्रिया रोवत गावत फिर अपना गांव बिजनौर गोसलपुर गांव में आ गई ना लोगन। लेकिन लड़का का आखिर लड़का बा, भगवान दस बरिस के बाद एक लड़का दिले रहलन, उहो लड़का आज बुला गई, ये लोग के हाथ से निकल गई। माई बाबू का करेजा कैसे मानिए भैया, माई बाबू लड़का के गम में पागल भइल होन, रोत होन आ रो के ये मतारी कहत में का कहले बे, वह तरज बाजौन सगुन निर्गुन दोनों में गावल जाला।

0: आखिरकार बाबूजी माई बाबू रोत हुन, लेकिन जौन होखे के तौन हो गई, रंजीत ना मिलन। इहवा का तनी कहानी हवे छोड़दा कि रमेश आ रमेश के औरत प्रिया बेटा के गम में पागल हो गईलन, एकदम पागल हुन। खैर कैसो अपने करेजा पर पत्थर रख के संतोष तक कह लिहलन। लेकिन यहाँ का कहानी अभी हमें छोड़ा, तनी रंजीत के देखा। हावड़ा स्टेशन पर रंजीत भाग गया, आखिरकार उसे एक कुल्ली पाया है हावड़ा का, रेलवे स्टेशन का कुल्ली पाया है, और वो कुल्ली ले जाकर के उस बच्चा को अनाथ आश्रम में दे दिया। अनाथ आश्रम में 5 बरिस के रंजीत के पालन पोषण होखे लगल। कितना दिन गुजर गई, 10 बरिस गुजर गई। 10 बरिस वो अनाथ आश्रम में पालन पोषण भइल ओ रंजीत के। आज ओ रंजीत 15 बरिस के हो गइलन। आज जब 15 बरिस के हो गइलन तो भइल का बाबूजी
1: कि अनाथ आश्रम में रंजीत अब पढ़ लिख हुआ सयान, अकीरन नाम की लड़की से

अनाथ आश्रम में आज रंजीत 15 वर्ष के हो चुकल बा। ओ रंजीत के अनाथ आश्रम से पालन पोषण होत बा बाबू, लेकिन वही अनाथ आश्रम में किरण नाम की लड़की थी, दोनों में नयनचार हुई। आज जब नयनचार हुआ तो दोनों आपस में प्यार कर बैठे। अनाथ आश्रम के कर्मचारियों को पता चला है, जो अनाथ आश्रम का मैनेजर था कहा कि बेटा प्यार करना कोई पाप नहीं है, लिखा गया है इंग्लिश का एक वर्ड कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, प्यार ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्यार है। मैं कहता हूँ कि प्यार करना कोई पाप नहीं है, लेकिन प्यार को वासना में दूषित कर देना महापाप हो जाता है। आखिरकार बाबूजी अनाथ आश्रम के सभी लोग मिल करके रंजीत और उस किरण लड़की से लोग शादी करवा दिए। शादी हो गई रंजीत से और किरण से। शादी जब दोनों की सगाई हो गई, शादी हो गई, तो अनाथ आश्रम का जो मालिक था, मैनेजर था, जो डायरेक्टर था, वो बोला कि बेटा ये अनाथ आश्रम है, जितना दिन तुम लोग पोषने पालने लायक थे अनाथ आश्रम शरण दिया, लेकिन जब शादी हो गई तो तुम अब यहाँ से निकल करके कहीं जा करके अपनी दुनिया बसाओ। आखिरकार मजबूर होकर के रंजीत अपनी किरण को लेकर के वहां से चल दिया। लेकिन कहाँ पहुंचा है बाबूजी, तेरी का बात। अरे जीवन से जग का मूल मिट गया, ए बापू जीवन से जग का मूल मिट गया, माली महाजा

आखिरकार बाबूजी रंजीत अपनी पत्नी किरण को लेकर के आ वही शमशेर सेठ के यहाँ जाके नौकर के काम करे लगलन। जब रंजीत नौकर के काम करे लगलन उस सेठ के यहाँ, एहवर धीरे धीरे समय गुजरल बा आ रंजीत के शरीर से वो किरण के पेट में गर्भ भी रह गई। ए बाबू देखें भगवान कैसन माया, ओ रंजीत के साथ बारे भगवान बड़ा ही दर्दनाक घटना घटा दी। का घटौले वर्णन कि सिरा वापर बोझा रहल फाने के सड़क रहल सिरा वापर बोझा रहल फाने के सड़क रहल आई गई आगे से।

0: बारे भगवान तेरी भी लीला गजब है। शेख शमशेर के बाबूजी रोड बा, रोड के दोनों तरफ दुकान बा।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
11: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
10: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री।

0: कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
1: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
2: वो दुकान से कपड़ा का बंडल रंजीत कपार पर लेके एह दुकान में आवत रहलन, रोड पार करत रहलन, तब तक एक ट्रक आइल बाटे। मालिक जाने भगवान जाने, प्रमाण तो यही मिला कि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। ट्रक कुचलता हुआ रंजीत को आगे निकल पड़ा। रंजीत कपड़ा का बंडल लेके अब वही बीच रोड पर गिर के तड़फड़ाता। आखिरकार रंजीत की स्पोर्ट डेथ हो गई, मतलब कि वही रंजीत अपनी दम को तोड़ दिया। ये खबर जब मिलल बा किरण के कि आज ये दुनिया में हमार मांग का सिंदूर ना हुन, कौन मेहरारू पागल ना बन जाइए भैया। किस्मत ऐसन रहल कि जेवना मेहरारू के अनाथ आश्रम में, जेवना लड़की के अनाथ आश्रम में पालन पोषण भइल, माई बाबू का छत्र छाया ना मिलल, उ लड़की के जिंदगी अनाथ आश्रम में बीतल बा बचपना जवान भइल, पति का जब साया मिलल, पेट में पति के गर्भ भी रह गई, ओकरा बाद पति का साया हट जाई, कौन मेहरारू पागल न हो जाई, कौन मेहरारू जियत रही, आज पागल के तरह आके अपने पति के लाश पर फफक फफक के रोत में उकिरन आरो के एक बात कहले वे, का कहलस बाबूजी किरण? इहे रोत में कहत में

आज किरण रोत में अपने पति का लाश पर गिर के आरो के अपने पेट में जोन पलत बा निशानी ओ रंजीत के रोत में आ कहत में का कहली

आखिरकार बाबूजी रोती है बिलकती है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। सेठ कुछ लोगों को बटोर करके अगल बगल के लोगों को अंतिम दाह संस्कार तो करवा दिया उस रंजीत का, लेकिन जब अंतिम दाह संस्कार करवा दिहलन बड़ा बड़े आफत एगो गर का माला पड़ल कि आखिर ओ हालत में ओ रंजीत के दुल्हिन किरण जाई तक कहवा जाई, पेट में बच्चा पलत बा। अगल बगल के लोग कहलन कि सेठ जी भगवान तोहके सब कुछ देले होवन, धन दौलत का कोनो कमी ना बा, ए हालत में लड़की कहाँ जाई। सेठ जी भी बड़ा दयालु रहलन, कहलन कि भैया ई लड़की अभी कहीं ना जाई, जब तक एकरा पेट में जौन गर्व बा रंजीत के जौन निशानी बा, जब तक उ निशानी बाहर ना निकलत बा तब तक ई लड़की हमार बेटी बन के हमारा घर में रही। उ सेठ शमशेर जी आपन बिटिया बना के ओ बेटी के घर में राखे रगलन। कुछ दिन गुजरल, दो तीन महीना गुजरल कि अचानक आज ओ किरण का भगवान फिर एगो बेटा दिहलन। किरण के भी पेट से बेटे भयल बा, आज जब बेटा भइल तो किरण ओ लड़का का नाम अपना कमलेश रखलस। कमलेश बेटवा के लेके एक बरिस दो बरिस तीन बरिस वही सेठ के घर में रही के जिंदगी के गुजर बसर करत बे। लेकिन किरण सोचे पर मजबूर बे कि आखिर ए सेठ जी के घरे हम ए तरह कितना दिन तक रह। एक बात ओकरा किरण के दिमाग में हमेशा खटकत बा कि हमार पति रंजीत बतौले रहलन कि हमार बिजनौर जिला में हमार गांव बाटे गोसलपुर, गांव का नाम गोसलपुर है, जिला बिजनौर में वो गोसलपुर गांव बा। ओकरा दिमाग में बात हमेशा खटकत बा, हमारे पति के गांव का नाम गोसलपुर है जवन की गोसलपुर गांव बिजनौर जिला में बा। कहला सेठ जी के बोला के हाथ जोड़ के रोवे लगल वो किरण लड़की की, बाबूजी जितना दिन तू हमके रखला अपन बेटी समान, अपन बेटी समझ के रखला बाबू, लेकिन एगो बेटी बाप के सर पर बोझा होलिन, हम कितना दिन तक तुहरा किए रह। लचार कर दिहलस जब किरण, आज शमशेर सेठ अगल बगल के लोग के बोलवलन पंचनामा तैयार कैलन। आ पंचनामा तैयार कई के कि मतलब लड़की के मुताबिक लड़की के चाहत के अनुसार आज वो लड़की के कुछ धन दौलत भी द्रव्य भी दिहलन पैसा कौड़ी दे के, आ बेटी के जैसे विदाई कल जला ओ तरह किरण के शमशेर सेठ विदा कह दिहलन। अपन छोट दुई बरिस के लड़का के लेके आ किरण बाबूजी चल दिहलस। आयल किरण, लेकिन कहवा आयल बे किरण, कवि जी लिखलन हम भैल का कि छोड़ी के सह

किन्नौर जिला की ओर चल दिले बे उ किरण देखा हिम्मत बांध के बारे औरत चलल बे कि हमारा पति के गांव गोसलपुर बिजनौर जिला में कहीं होई जरूर मिल जाइए। यह ओकरा मन में बात कवि जी लिखलन है का।

0: आखिरकार बाबूजी बिजनौर जिला की ओर गोसलपुर गांव की तलाश करने लगी। ए तरह से और 2 बरिसों के बीत गई बिजनौर जिला में और गोसलपुर गांव खोजे में। एक भाड़ा पर रूम ले बे कुछ दिन तक, जब तक सेठ जी जो उन पैसा देले रहलन वो पैसा से अपने बचवा के अपने पालन पोषण करत बे। लेकिन धीरे धीरे सेठ जी का पैसा दिहल खत्म हो गई। नतीजा ही निकलल कि आज बाबूजी ऊ दर दर का ठोकर माई बेटवा खाए लगलन, भीख मांगे पर मजबूर हो गईलन। 2 बरिस का दिन और गुजरल बा, लड़का कहे का मतलब कि अब धीरे धीरे 4 बरिस के हो गई। आज अब दर दर का ठोकर खाए लगलन तो 1 बरिस तक घूम घूम ऊ माई बेटवा भीख मांगे लगलन। लड़का 5 बरिस का हो गई। लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे ऊ बाबूजी किरण अपन 5 बरिस के बेटवा के लेके गोसलपुर गांव के नजदीक पहुंच गई, जहां कुछ गांव के बहरे सिवान में भिखारी रहत रहलन। ओ भिखारियन में जाय के अपन प्लास्टिक के एगो मड़ई लगाय के अपन बचवा के लेके रहत बे। संजोग देख बाबू, बारिश पड़त बा, मौसम बरसात का बा, आ ओ बरसात के मौसम में एक दिन उमतारी किरण भिजल बे, बीमार पड़ल बे, इतना बुखार तपत बा शरीर में, भीख भी ना मांग सकत बे कि लड़का के कुछ खिया सके। माई बेटवा भूख से व्याकुल हो गईलन, मतारी बुखार से तड़पत बे। लेकिन 5 बरिस का बेटा जौन कमलेश बा, किरण के 5 बरिस का बेटा कमलेश याद रहे, उ बेटवा माई का बीमारी हालत देख कर बर्दाश्त ना कैलस। आज सवेरे निकलल बा आ वही पहुंच गई बा भीख मांगत मांगत गोसलपुर गांव में। लेकिन गोसलपुर गांव में के करी द्वार पर पहुंचल बा बाबूजी।
1: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
5: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
6: कहाँ पर?
5: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
6: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
5: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
6: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565965।
7: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
8: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
9: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आए और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाए और बनाए अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
8: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
10: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
11: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
12: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
13: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
14: ठक ठक
15: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
14: अच्छा मिला ही नहीं।
15: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
13: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
15: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
13: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
15: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
14: क्यों, क्या हुआ है?
15: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
14: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
15: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
13: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
0: कि पनिया पियाई दे तब बचवा, ई देख मालिक के मर्जी। वही पहुंच गई गोसलपुर गांव में रमेश के दरवाजा पर, अपने बाबा के दरवाजा पर पहुंचल बा। जवन की रमेश कयोरत बुढ़िया हो चुकल बे, ऊ प्रिया और बीमारी हालत में हो बे गिरल बे। रमेश कहीं गई बनन, ऊ बुढ़िया मतारी ओकर बुढ़िया आजी घर पे गिरल बे। वही दुआरी पे जाके ऊ 5 वर्ष का लड़का कमलेश रोवत बा कि माई हमके दूठे रोटी दे दे, हमार माई का तबीयत खराब बा, हमार माई तड़पत बे बुखार से। जब आवाज सुन ले बे बुढ़िया तो बुढ़िया को उठे का गौ ना बा प्रिया का, ओ रमेश के औरत का इशारा से, हाथ से इशारा कई लेबे, इशारा दे के कहले बे ओ 5 वर्ष के लड़का कमलेश से अपने जवन की ओकर पद में खास एकदम नाती लगत बा। वही कमलेश से कहत बे, लेकिन वो का जानत बा कमलेश कि हमार आजी हो, और आजी का जानत बे कि हमार नाती हो। कहले बे बुढ़िया उप्रिया अपने नाती कमलेश से, का कहले बे बाबू?

इशारा करत बे कि बाबू तनी हमके पानी पिया दिया, हमरे घर में केहू ना बा। लड़का 5 बरिस का जरिए अगना में पहुंचल बा, वो घर के गगरी से पानी ढरले बा। आ गगरी से पानी ढार के कैलस का कमले

लड़का पानी निकाल के वही बुढ़िया माई के पियवलस, आ जेवें पानी पियवलस बा रे भगवान तोहरो गजब का लीला बा कि जेवें वो बुढ़िया माई के मुंह में पानी गई कि अचानक बुढ़िया माई का दम टूट गई। कहे का मतलब कि बुढ़िया माई ये दुनिया के छोड़ के चल दिली। कवि जी लिखलन हा एता ना कह।

0: आखिरकार बाबूजी तब तक वही गांव के लोग वही बुढ़िया माई के रमेश के दरवाजा पर पहुंच गईलन। देखलन कि अरे बुढ़िया दम तोड़ देले बे, रमेश के औरत आए घरवा में से एक ठे जन्मी लड़का निकलल अवतवा। लड़का के लोग पकड़ लिहलन, मारे लगलन कि बस करा, एकरे करदानी बाई चोर है, घर में कुछ चोरावे के नियत से घुसा रहा आ हो न हो कुछ बुढ़िया के कह दिहलस। लड़का मार खात बा, हाथ जोड़ के लड़का रोत बाकी बाबू हम चोर ना है। गांव के लोग पूछलन कि आखिर तोर घर द्वार कहाँ बा। लड़का रो के बतौलस कि बाबू हमर घर द्वार के तो पता नहीं खे, लेकिन हमर माई बिया वही भिखारियन के डेरा में चला लोग देख ला लोग, हमार माई के बुखार लगल बा, भूख से व्याकुल बिया माई, हम भीख मांगे खाती आई लली हाँ, ई बूढ़ी माई हमके पानी पियावे के कली, हम पानी पियोली हैं लेकिन दम तोड़ दिहली। लड़का के पकड़ के लोग ले गईलन कमलेश के मतारी तर, आ कमलेश के मतारी किरण के पास जब ले गईलन, आखिरकार किरण सही में वास्तव में बुखार से तपत बे भिखारियन के वही डेरा में आश्रय प्लास्टिक के एक झोपड़ी लगा के रहल बे, सुतल बे, गिरल बे। देखे बाबू लोग पूछलन कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ है, कैसे तुम आई यहाँ, तुम्हारा ये कौन है। आंख में आंसू लेके औ किरण रोत बे औ गांव के लोगन से बतावत बे कि भैया हम कोनो चोर ना है, हमार बेटा कोनो चोर ना है, हम मुसीबत के मारल आदमी बानी। रो के कहले बे, का कहले बे,
1: हाँ, रोवेली मतारी बरिसे, रोवेली मतारी बरिसे झर झ

गांव वालन के सामने उ किरण रोत भी अपने बेटवा का लेके गोदी में 5 बरिश के लड़का कमलेश के अब बतावत बे की भैया चोर नहीं बाटे बाबू।

0: आखिरकार इतना बता करके कि भैया हमार लड़का चोर ना हो, हम मुसीबत के मारल बानी। जब तह लोग जानल चाहत हुआ लोग तो सुना लोग जितना हम जानत बानी बतावत बानी। उ बाबूजी किरण नाम का कमलेश कमतारी आज बतावे लगल आ का बतौले बे।
1: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम
2: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026-27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
1: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
2: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
1: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
1: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता:
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
1: जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
3: और 9097160602।
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
2: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
2: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
2: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
2: पता: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
8: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है, और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा, और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये दो फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हो सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

तनी बात समझला। किरण नाव के लड़की रो रो के वो गांव के लोगन से बतावे लगल कि भैया हमरे पति का नाम रंजीत रहल, उनकर माई बाबू बड़ा बच्चा रहलन, ऊ ले के लोग गई लोग कलकत्ता, लेकिन हावड़ा स्टेशन पर माई बाबू के साथ छूट गई। अपना बाबू के नाम रमेश बतौले रहलन, माई का नाम प्रिया बतौले रहलन। इहो हमसे बतौले रहलन कि हमार गांव बिजनौर जिला में गोसलपुर गांव का नाव बा, हम मुसीबत के मारल बानी ये बाबू। उ लड़की रोत बे,

लड़की बतौले बे ए बाबू कि हमार पति हमके मेरठ शहर में लेके अइलम आयाय के अपन जिंदगी का गुजर बसर करे खातिर ओई शमशेर सेठ के यहाँ नौकरी करे लगलन। उनका कपड़ा के दुकान रहे, ए दुकान से वो दुकान में कपड़ा ले जात रहलन बाबू। तब तक हमनी के किस्मत के मारल एक दिन हमारा पति के साथ भी घटना घट गई।

0: अरे बाप रे बाप, ए तनी बात जवन सुनलन उ रमेश उ लड़िका के जवन की खास दादा लगत रहलन, जाके दौड़ के वही कमलेश नाती के गोदी में उठा लियलन। कहलन की बा रे भगवान, ई का कैला, हमार बेटा के साथ तो छूट गई लेकिन वही बेटा के पहचान आज हमारे गोदी में मिलल बा, आ वही पहचान वही बेटवा के बेटवा अपना याजी के पानी पियोलस जवन की अपने याजी को ओकरा मुक्ति मिल गई, ओकरे हाथ से नाती के हाथ से आजी का मुक्ति मिल गई। रोत हुन आखिरकार वो लड़िका के लेके गईलन, किरण के लेके गईलन, आ कहलन की बिटिया ई तोहरे घर बा, ई दूसरा के घर ना बा, भीख मंगले के जरूरत ना बा, ई सब घर और ई खेत बारी तोहार बाटे। आखिर पूरा गांव के लोग मिलन है, आ आखिरी वक्त में उहे लड़िका अपने आजी के अर्थी कानी पे उठौलस और कैले का बा बाबू
1: की आखिरी वक्त पर नाती आजी के पिया वाला से निरावा अर्थी ले

देश हमार लाल ना भुलाई, नतिया के पाके लोग कहे समझाई, कुल के चिराग पवला हीरा के हीरावा, अरथी लेके गईला।

हमारे गाना के अंतिम लाइन रहल, यहीं से कहानी खत्म होती है। जय जखाण गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, श्री नारायण अनुजलाल संग मितवा।

0: तो श्रोता लोगिन ई रहल रेडियो रिमझिम पर आज के बिरहा। हमरा पूरा उम्मीद बा कि आज के बिरहा रवा सभी के बहुते अच्छा लागल होई। तो अगर रवा सभी चाहत बानी ए पर अपन सुझाव या शिकायत हमनी तक पहुंचावे के तो हमनी के व्हाट्सएप नंबर बा 98527888291 और ईमेल आईडी बा radiorimjhim@gmail.com और हमनी के खत के पता बा रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज पिन कोड 84 14 28। रउआ सभी कौनो भी माध्यम से अपन सुझाव या शिकायत हमनी के लगे भेज सकत बानी। तो चलिए अब हमके जाए के दी इजाजत, नमस्कार और इस सुनत रहे अपना बोली के पहचान रेडियो रिमझिम 90.4।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ। आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है।
4: फाइनल में पहुंची अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंह तोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
5: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
6: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
4: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
7: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
4: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
7: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
4: कनाडा में खालिस्तानी समूहों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। ये सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि राज्य शनिवार को शपथ ग्रहण के साथ अपनी अगली सरकार के गठन की ओर अग्रसर है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल में भारी बहुमत से जीत के बाद बीजेपी नए सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देना चाहती है। अगले शनिवार रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की शपथ होगी। दो दिन पहले से ही ब्रिगेड में मंच और सुरक्षा तैयारियों का काम शुरू हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रह सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित विभिन्न राज्य की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वेत्रिकड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। एक रिपोर्ट।
5: दिन की शुरुआत टीवीके प्रमुख जोसेफ विजय और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर की बैठक से हुई। बैठक में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल एल सुंदरेशन की कानूनी राय लेने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया गया। सेंगो तैयान और सीटीआर निर्मल कुमार जैसे टीवी के नेताओं ने सीपीआई और सीपीआईएम के नेताओं से उनकी पार्टियों से समर्थन मांगा। इस बीच एआईएडीएमके भी आज रात पुदुचेरी में पार्टी के महासचिव एडप्पाडी पलानी सामी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक कर रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया है कि आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने नव निर्वाचित विधायकों से नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस बार निर्वाचित विधायकों में वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल वर्तमान में सांसद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आज संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के विभिन्न घटक दलों के साथ भी चर्चा की। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री के बारे बारे में अंतिम निर्णय इस सप्ताह के अंत तक लिया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल के चेन्नई से लौटने के बाद ही होने की संभावना है। राज्यपाल वर्तमान में तमिलनाडु से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच रुकने तक लखनऊ ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायल सीमा में कल तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरलम में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हो सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी

0: 4047551 पे।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH-27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आपसी विवाद में गोली मारने वाले व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध हथियार के साथ वीडियो वायरल के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। कुचायकोट के विधायक पप्पू पांडे को नहीं मिली अदालत से जमानत, अगली तारीख पर फिर होगी सुनवाई। बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी और भोरे से विधायक सुनील कुमार बने सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री। पंचायत सचिव को जिला पदाधिकारी ने किया बर्खास्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के साहबाजवा गांव में आपसी विवाद में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस को रात करीब 11:30 बजे जानकारी हुई, जिसमें पीड़ित साजिद हुसैन को फोन कर घर से बुलाकर गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके पेट में गोली मारकर घायल कर दिया गया। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के लिए FSL की टीम ने भी जांच किया, जिसके बाद घटनास्थल पर एक गोली का खोखा पुलिस ने बरामद किया और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से स्थिति चिंताजनक देखते हुए घायल साजिद हुसैन को डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। पुलिस ने इस मामले में तकनीकी जांच और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर एक आरोपी सकलदीप उर्फ भोला, पिता विष्णु पंडित, साकिन साहबाजवा, थाना नगर को गिरफ्तार कर लिया। इनके घर की विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें उनके घर से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया और आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इससे अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है और आपसी विवाद

0: के कारण घटना कारित करने की बात सामने आई है। पुलिस ने अब इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर विजयपुर थाना के पुलिस ने सरकारी व्हाट्सएप नंबर पर मिले एक वायरल वीडियो के आधार पर देशी कट्टा लहराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि विजयपुर पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर अवैध हथियार के साथ आरोपी रवि सिंह पिता मनबोध सिंह साकिन भरपुरवा थाना विजयपुर को गिरफ्तार किया गया है और इस पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की गिरफ्तारी पर अदालत ने रोक लगाया है। उनके सीए राहुल तिवारी की गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई गई है। इसको लेकर आज अदालत में फिर से सुनवाई की गई थी, जिसके बाद दोनों आरोपियों का पक्ष रखने के लिए गोपालगंज में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और राज्यसभा के सांसद मनन मिश्रा ने पक्ष रखा। अदालत ने काफी देर तक दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फिर से अगली तारीख 19 मई को निर्धारित किया है। आज भी इस मामले में अदालत कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। दोनों पक्षों का दलील अदालत के द्वारा सुना गया है। इस मामले में हालांकि अभी भी विधायक पप्पू पांडे और उनके सीए राहुल तिवारी की गिरफ्तारी पर जो रोक लगाया गया है वह जारी रहेगा। वहीं सतीश पांडे जो विधायक पप्पू पांडे के बड़े भाई हैं, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। उनके घर अदालत ने इश्तेहार का तामीला किया है और अब कुर्की जब्ती की प्रक्रिया में अदालत की कार्रवाई चल रही है और पुलिस इसमें कड़ा रुख अख्तियार कर रही है। आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने एक पंचायत सचिव अभय कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया। बताया जा रहा है कि भोरे के बीडीओ ने पंचायत सचिव पर योजना राशि के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितता, पंचायत सरकार भवन निर्माण के बाद मजदूरों के भुगतान में गड़बड़ी, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना में लापरवाही और बिना सूचना कार्यालय से गायब रहने जैसे आरोपों में इन पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि वीडियो ने ऐसे आरोप लगाए थे और इन गंभीर आरोपों के बाद जिला पदाधिकारी ने इसकी जांच करवाई थी और जांच में प्रथम दृष्टया कई रिपोर्ट सही पाए गए, जिसके बाद प्रशासनिक समीक्षा के बाद बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के तहत कार्रवाई करते हुए जिला पदाधिकारी ने पंचायत सचिव अभय कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आज बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी और भोरे से विधायक सुनील कुमार ने बिहार सरकार के नए मंत्री के रूप में शपथ लिया। इसके लिए भव्य तरीके से गांधी मैदान में आयोजन किया गया था, जहां प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम वरिष्ठ नेता भाजपा के मौजूद थे और सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली बिहार सरकार में गोपालगंज से दो मंत्रियों को जगह मिली है, जिसमें मिथिलेश तिवारी और सुनील कुमार का नाम शामिल है। जैसे ही दोनों मंत्रियों ने शपथ ली तो गोपालगंज से तमाम उनके समर्थकों ने उत्साहपूर्ण तरीके से सोशल मीडिया पर दोनों ही मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर आज अलग अलग थाना क्षेत्रों से अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए सभी 40 लोगों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूरे जिले में जनगणना 2027 को लेकर मकान सूचीकरण और गणना का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में जनगणना कार्य को लेकर प्रगणकों के टीम को लगा दिए हैं और सभी प्रगणक अपने अपने आवंटित क्षेत्रों में जाकर मकानों का सूचीकरण और परिवारों का विवरण, संकलन तथा सीमांकन का कार्य कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक गोपालगंज के निर्देशानुसार जिले के सभी थाना क्षेत्रों में थाना अध्यक्षों के नेतृत्व में स्वर्ण व्यवसायियों के साथ बैठक की गई। बैठक में स्वर्ण व्यवसायियों की सुरक्षा, विधि व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, अपराध नियंत्रण एवं सुरक्षा से संबंधित आवश्यक सावधानियों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा, अलार्म एवं अन्य सुरक्षा उपकरण लगाने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल स्थानीय थाना को देने जैसे कार्यों को लेकर जागरूक किया गया। पूछका गांव थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त शंभू सिंह पिता स्वर्गीय श्रवण सिंह साकिन जमसड़ टोला थाना उचका गांव को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पटियां थाना की पुलिस ने भी हत्याकांड के एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी नसरुद्दीन उर्फ शालू बताया जा रहा है, जो मुंशी मियां का पुत्र है और अमही बाके सोनरिया का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के तुर्कपट्टी में छापेमारी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इधर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने आज सिधवलिया थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर, अभिलेख संधारण, लंबित कांडों की और मालखाना इत्यादि की जांच की, हाजत तथा साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। थाने पर उपस्थित आम जनता से भी उनकी समस्याओं के संदर्भ में पूछताछ करते हुए आवश्यक जानकारी ली तथा उनके त्वरित और उचित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। मोतिहारी के पतौरा गांव में किसानों के बीच संतुलित उर्वरक उपयोग एवं हरित खाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक किसान जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के महत्व, अत्यधिक रासायनिक खादों के दुष्प्रभावों तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के उपायों के प्रति जागरूक करना था। जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने बिहार सरकार में नव पदस्थापित मंत्री मिथिलेश तिवारी और सुनील कुमार को शपथ ग्रहण के बाद बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने भी मंत्री के रूप में शपथ लिया है। सभी लोगों को उन्होंने हृदय से बधाई देते हुए कहा कि नए मंत्रीगण मिलकर अब बिहार को नई दिशा में ले जाकर बिहार का विकास करेंगे। ऐतिहासिक पांडुलिपियों के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन गंभीरता से काम कर रहा है। इसी को लेकर आज शहर के मदरसा इस्लामिया में महत्वपूर्ण दस्तावेजों का निरीक्षण जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने भी मदरसा इस्लामिया में पहुंचकर वहां संरक्षित ऐतिहासिक पांडुलिपियों एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का निरीक्षण किया। 9 तारीख को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में इस बार ट्रैफिक विभाग के तरफ से वाहन चालकों को भी राहत दिया जा रहा है। जिन प्राइवेट वाहन चालकों का जुर्माना ट्रैफिक पुलिस ने किया है, ऐसे वाहन चालक अब ट्रैफिक थाना में जल्द से जल्द पहुंचकर अपने समन की राशि को कम करवा सकते हैं और राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं। लगभग 50% राशि कम कर राष्ट्रीय लोक अदालत में उनका चालान जमा हो जाएगा और उनका मामला निष्पादित हो जाएगा। ट्रैफिक डीएसपी सोमेश मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन प्राइवेट वाहन को ट्रैफिक विभाग ने चालान किया है, वे लोग जल्द से जल्द ट्रैफिक थाने में पहुंचकर अपना टोकन ले लें और टोकन लेकर 9 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत में जाएं। वहां उनके जुर्माने की राशि को कम कर और उनका जुर्माना जमा करके उनका चालान खत्म किया जा सकेगा। हालांकि जनवरी 2026 से पहले जिनका चालान कटा है, उनको ही इस योजना का ऑफर का लाभ मिलेगा और सिर्फ जो प्राइवेट वाहन है उन्हीं को इस ऑफर का लाभ मिलेगा। जो कमर्शियल वाहन है उनको इस ऑफर का लाभ नहीं मिल सकेगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
1: आपसी विवाद में गोली मारने वाले व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध हथियार के साथ वीडियो वायरल के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। कुचायकोट के विधायक पप्पू पांडे को नहीं मिली अदालत से जमानत, अगली तारीख पर फिर होगी सुनवाई। बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी और भोरे से विधायक सुनील कुमार बने सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री। पंचायत सचिव को जिला पदाधिकारी ने किया बर्खास्त।
0: इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
9: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
10: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
9: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
10: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
9: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
10: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
11: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
9: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
12: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
13: कहाँ पर?
12: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
13: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
12: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
13: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
12: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।
14: प्रसाद क्लिनिक।
15: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
14: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
15: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ समय 9:32 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और थोड़े लेट हो गए हैं आप सभी के बीच। और क्या ही करें, देर करता नहीं देर हो जाती है। और चलिए कार्यक्रम को शुरू करना है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने के फरमाइश करना है तो 90s के गाने, ओल्ड इज़ गोल्ड गाने के फरमाइश करना है। यदि ओल्ड इज़ गोल्ड गाने के फरमाइश करते हैं, पुराने गाने का फरमाइश करते हैं तो आपकी प्राथमिकता होगी। और आगे कुछ मैसेज पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और पहला मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, समीर आलम जंगलिया से सॉन्ग सुनना है, तुझसे बिछड़ के जिंदा है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने का फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और डेडिकेट इरफान भाई, कमरान भाई, गुलाम हुसैन, अहमद अली, शाहिल भाई, दिलीप भाई, शफिया वशिम, शगुफा करीम, रुबीना नाज, सफाक साजा, हीना हजरा, अनामिका लवली, गुड़िया, शबीता ब्यूटी, शबनम जरीन, शबनम सिद्दीकी और नीतू रोशनी, शबीना, शब्बा, शलेहा, आशा, निशा, तब्बू, सरदा और संतरा और आपको। तो चलिए आपके हम मैसेज तो शामिल कर दिए गाने के फरमाइश आप ही के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि प्लीज सर प्ले कर दीजिएगा, मैं सनी राज पटेल। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश तो पूरा करेंगे। आगे मैसेज, हेलो सर नमस्कार, राधे राधे सर जी, मुझे गाना सुनना है तू मेरी मैया मैं तेरा लाला। बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले हमारे श्रोतागण अजित शिवांश चौधरी, आदित्य चौधरी, कोमल चौधरी, अनामिका चौधरी, वस्त्रा, लाला राजगंज, लाला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय, मैं शिल्पी विद्यर्मा से और आज मुझे भी सॉन्ग सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा, हेलो हाय कैसे हैं, बिल्कुल बढ़िया। और मैसेज करती है मनीषा फ्रॉम अमोमोजम से और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज, हेलो हमको गाना सुनना है। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और रही बात गाने की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश तो है, लेकिन आपके मैसेज हम देखेंगे कहीं आप चीटिंग तो नहीं कर रही हैं। और इस मैसेज को करती हैं शुक्लवा से निशा, और हमें लगता है कि इस सप्ताह आपकी फरमाइश हम पूरी करे हैं और आपकी फरमाइश हम बिल्कुल सुनाए हैं और आपने गाने की फरमाइश की थी सोमवार के दिन है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि मैं MD महमूद फ्रॉम केरला से और इन्होंने गाने के फरमाइश किए हुए गाने सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे महमूद जी, और आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचे हुए हैं और लिखा गया है, कुछ लाइनें हैं इनके तरफ से, शाम सूरज की ढलना सिखाती है, शाम सूरज की ढलना सिखाती है, शाम परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती तो है तकलीफ़ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। कैसे हैं, ठीक है ना। मैं सुनीता कुमारी ख्वाजापुर से और आज मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और आप सभी बने रहे हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे और पहले गाने के फरमाइश प्ले करते हैं। शेर समीर आलम जंगलिया से मैसेज किए हुए गाने के फरमाइश के साथ, तुझसे बिछड़ के जिंदा है।

कभी प्यारा संग रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे सुन रहे हैं। तुझसे बिछड़ कर जिंदा है प्यार बहुत शर्मिंदा है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज सर प्ले कर दीजिएगा मैं सनी राज पटेल। तो चलिए आपके गाने हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सर दिल की गहराइयों से, आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो हाय प्रणाम सलाम मेरे तरफ से प्यारे प्यारे लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ निशा भारती विलेज उजवलिया उसका गांव प्रखंड से, और मुझको शौक सुनना है मेरा दिलबर मेरा साथी ले आएगा ढोल बराती। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, थोड़ा सा सब्र करें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने के फरमाइश और आगे लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग मैसेज करती हैं शिल्पी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, अलका याग्निक उदित नारायण दिल है तुम्हारा 2002। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले राम पुकार कुमार जी हैं। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और कहते हैं कि सजती रहे खुशियों की महफिल हर खुशी सुहानी रहे, आप जिंदगी में इतना खुश रहे कि हर खुशी आपकी। आगे तो कुछ लिखे नहीं और आगे बढ़ते हैं गाने को, अगली फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं। यहाँ पे अनूप यादव लुधियाना पंजाब से भी जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल अनूप जी आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, बन रहे हैं आप भी हमारे साथ। सुनते हैं अगले हम सभी फरमाइश रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे सनी राज पटेल जी की। और इनकी गाने की फरमाइश कौन सी है ये तो नहीं जाने लो, और चलिए देखा जाए। ओह काफ़ी प्यारा गाने का फरमाइश करते हैं और गाने का बोल देते हैं, पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, ओ मेरे सोना तुम मेरे होना। चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

कमाल के सॉन्ग रेडियो रेमसी 90.4 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब। और आगे गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है और यहाँ दिल्ली की इंतजार हो रही है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए क्या कहा जा रहा है। और गाने का बोल दिया गया है, दिल दे तानी दिलदार समरिया। और इस गाने के फरमाइश करती हैं शिल्पी बीत बरवार से, तो चलिए इनके ये गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे भोजपुरी में।

रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और सोशल लाइफ में इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं। तो चलिए आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग वेरी नाइस, और मैसेज करती है निशा भारती। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि जिस दिन सोना होगा ना कोई तकिया, ना ही कोई बिछौना होगा, केवल आसमान में लिखा होगा कि मंजिल तेरा है, थी देख तेरा अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। नमस्ते सनु भैया, मेरा भी वेलकम, एक सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने के फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है शिव सागर जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अब तो गाना फरमाइश बजा दीजिए राम पुकार जी। मैसेज करते हैं, बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि और मैसेज पहुंचाते हैं सनीराज पटेल जी, लिखते हैं कि थैंक यू शेयर सॉन्ग प्ले करने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए, और आगे बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज, हाय अस्सलाम वालेकुम, मेरा भी वेलकम कीजिए। तो बिल्कुल, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैसेज करती हैं शबीना खातून फ्रॉम दिल्लीया से, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि हाय सर, मेरा नाम कब्या पटेल में। तो बिल्कुल, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने के फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर जी, नाम दीप्ति कुमारी, घर दतिवना से जुड़ गई हूं, और मुझे भी गाना सुनना है नाइस सॉन्ग, बारात आते आते लगन का टाइम ना निकल जाए, कहती है। बिल्कुल, अभी बहुत टाइम है, अभी तो हमें लगता है कि 2 माह टाइम है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और आगे गाने के फरमाइश तो बिल्कुल लेके करके सबकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, और आप भी बने रहे हमारे साथ, आपकी भी फरमाइश प्ले करने की कोशिश रहेगा, थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है। और बढ़ते हैं आगे, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं, और गाने का फरमाइश किया गया है, ये भी गाने भोजपुरी में ही है, और गाने का बोल दिया गया है, हमरा प्यार के बदला में बोला का दिले बाड़ू हो, अनूप यादव जी इस गाने के फरमाइश करते हैं। तो सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एमसीएम 94 एफएम पे।

कमल के सॉन्ग सुन रहे थे हम सभी रेडियो रेमसीम 94.4 एफएम पे शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया कि सर जी मेरा गाना भी भूल गए हैं आप, दूसरे नंबर पे था मेरा। और इस मैसेज को करते हैं मैसेज को पहुंचाने वाले बहुत सारे इसमें नाम दिए गए हैं, शिवांश चौधरी, आदित्य चौधरी, कोमल चौधरी, अनामिका चौधरी, बस्तरा, लालगंज, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। और गाने के फरमाइश इन लोगों की तरफ से है, तू मेरी मैया मैं तेरा लाला। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे कुछ से मैसेज पहुँचा हुआ है तो देख ले। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि अनु भाई अब आप भी भूल जाओ। मैसेज करती हैं दीप्ति धतियुना से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि भोजपुरी सैड सॉन्ग लजवा वेरी नाइस। और मैसेज करती हैं निशा भारती। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज करते हैं आग दिल में लगी है वो खफा हुए, महसूस हुआ तब जब वो जुदा हुए, करके वफा कुछ दे ना सके वो, पर बहुत कुछ दे गए जब वो बेवफा हुए। चलिए कमाल की लाइन है। और इस मैसेज को करते हैं राम पुकार जी। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने के फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रेमसीम 94.4 एफएम पे।

काफ़ी प्यारा संग रेडियो रेमशिम 90.4 FM पे सुन रहे हैं हम सभी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि वाह सुपर सॉन्ग। और मैसेज करते हैं MD महमूद फ्रॉम केरला से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सुजीत कुमार लालगंज मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है अगले गाने के फरमाइश निशा भारती की तरफ से पहुंचा हुआ है, गाने का बोल दिया गया है। गाने का बोल दिया गया है मेरा दिलबर मेरा साथी ले आएगा ढोल बराती। डेडिकेट करती हूँ सोनी मैम श्रुति मैम दिव्या मैम निशा सिंह एंड निशा पांडे सुधा सिस्टर बतरदे वाली और रोशनी सिस्टर शिल्पी सिस्टर साहिद अंसारी शबनम सिद्दीकी और मेरी पड़ोसन सुधा सिस्टर रेडियो ओ राधा सिस्टर और 90.4 FM सुनने वाले टीम लिसनर को और फिलहाल सुन रहे उन सभी को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रेमशिम 90.4 FM पे। यहाँ पे और भी मैसेज पहुँच रहे हैं और लिखा गया है कि बहुत ही खूबसूरत गाना अभी हमें सुनने को मिला तू मेरी मैया मैं तेरा लाला। और इस मैसेज को करते हैं राजेश प्रसाद जी आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे पहुँचा हुआ मैसेज और कह रही हैं कि आज बज पाएगा कि नहीं, बिल्कुल बजेगा। चलिए आगे गाने को प्ले करते हैं अगली और सुनते हैं हम सभी।

कभी प्यारा संग रेडियो एमजीएम 94 एफएम पे सुन ले तेरा दिल भर तेरा साथी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे कई मैसेज पहुंचाने वाले। लिखा गया है कि मोहब्बत का नाम लेके साथ जीने मरने की कश्में दिखाती है, फिर मजबूरी का नाम देके ये लड़कियां कई आशिकों का दिल जलाती है। धन्यवाद बढ़ड़िया थाना क्षेत्र बालापुर से मैसेज करते हैं सनोज जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। जय माता दी। सुनविया मेरा भी गाना सुना दीजिए, आज तो नहीं सुना पा रहे, कल कोशिश रहेगा। और अंतिम गाने हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ सुपर सॉन्ग सुनो भाई, मेरा कितना नंबर था आज तो नहीं हो पा रहा है, और आप साधारणतः गाने की फरमाइश कीजिएगा, कल कोशिश रहेगा कल आपकी फरमाइश हम प्ले कर दें। आपके गाने को देखते हुए हमें रुकना पड़ा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि प्लीज़ आज मेरा सॉन्ग सुना दीजिए, तो बिल्कुल आज तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि समय की समाप्ति हो रही है और समय जो है समाप्ति का हो चुका है। तो चलिए अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। और अंतिम गाने की फरमाइश करती हैं दीप्ति धतियुना से, और गाने का बोल देती हैं जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए। तो आप सुनते रहें साथ ही साथ सभी श्रोतागण, और हम निकलते हैं, फिर मिलते हैं कल। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: फिल्मी गाने से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें।

0: to enjoy evergreen melodious songs from over the years to the latest ones. Subscribe to Filmi Gaane channel.
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM. सुनो दिल से.

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिदम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

अत्यंत मार्मिक प्रसंग है अहल्या उद्धार का। जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाकर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों को राजा जनक का धनुष यज्ञ दिखाने ले चले। मार्ग में एक सूना आश्रम दिखाई पड़ा जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। वहां एक शिलाखंड पड़ा था जिसके विषय में श्री राम की जिज्ञासा सुनकर ऋषिवर ने उन्हें गौतम पत्नी अहल्या के अभिशप्त होने की कथा सुनाई और बोले, ये पत्थर की देह धारण किए युगों से बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की धूलि की प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण का स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहल्या अपने सुंदर नारी रूप में हाथ जोड़े प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेमवश उसका शरीर पुलकित था और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।